मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56:60 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवा

माकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम

0: सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity.

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हर सुबह जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है और जब उस सुबह की शुरुआत ईश्वर की वंदना से हो जाए तो मन, तन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। आज मंगलवार है, वीर बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित दिन, शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक। इसी पावन भाव के साथ आकाशवाणी आगरा से हम शुरू कर रहे हैं आपका प्रिय भक्ति कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे संवित स्वर में चंदन सा सुरभितन। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में हे राम हे राम।

राम का नाम लेते हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। राम की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है।

भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। भक्ति वह सरिता है जो मन को निर्मल और हृदय को पावन बनाती है। और वंदना वह सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ देती है। आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में जिनके मन में बसे श्री राम। आइए अब सुनते हैं चंद्रू आत्मा के स्वर में हम सबको है तेरा सहारा।

0: इसी भक्ति रचना के साथ ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम चिंतन का, तो आइए सुनते हैं श्रीनिवास शास्त्री के विचार।
1: श्रीनिवास शास्त्री ने अपने अनूठे वक्तृत्व, उच्च आचरण, स्थिर बुद्धि और दूसरों के विचारों के प्रति उदार दृष्टिकोण के द्वारा विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। शास्त्री जी के विचार आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। उनके स्वभाव का वैराग्य और लगन किसी भी व्यक्ति को आदर्श की साधना में अकेले चल पड़ने को प्रेरित कर सकते हैं। वो कहा करते थे कि हमारा जीवन अमूल्य है, हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, हमारे सामने बहुत से काम हैं, इसलिए निज स्वार्थों को भुलाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी दृष्टि में आत्मसम्मान और स्वाभिमान का बहुत महत्व था। उनका कहना था, जब राष्ट्र स्वतंत्र नहीं तो भला हमारे दिल और दिमाग कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। शास्त्री जी का मानना था, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के शत्रु हैं, हमें प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक समस्या को गुण अवगुण के आधार पर तोलना चाहिए। शास्त्री जी का आदर्श वाक्य था, चुप लगा जाने पर घाव शीघ्र भरता है। मेल मिलाप और समझौता उनके जीवन के पथ प्रदर्शक वाक्य थे। स्वतंत्रता के संबंध में उनका कहना था, स्वतंत्रता पर किसी एक का हक नहीं है और उसे किसी दायरे में कैद भी नहीं किया जा सकता। संस्कृति, ज्ञान, गुण और पुण्य की तरह स्वतंत्रता जितनी दी जाती है उतनी ही विकसित होती है, और जितना ही लोग इसके प्रति सतर्क रहेंगे उतना ही उनके जीवन में सौंदर्य और समृद्धि बढ़ेगी। जो स्वतंत्रता को किसी क्षेत्र विशेष या जाति विशेष तक सीमित रखने का प्रयत्न करता है, उसे ये नहीं मालूम कि वो क्या अनर्थ कर रहा है, क्योंकि वो मानवता को स्वतंत्रता से बढ़ने वाले गौरव और समृद्धि से वंचित कर रहा है। मेरा विश्वास है कि समय आने पर हर जाति और हर देश के लोग उसमें कुछ न कुछ वृद्धि कर सकते हैं। शास्त्री जी जातीयता, आपसी भेदभाव और रंग भेद के खिलाफ थे। वो कहते थे, जब जब हम रंगों और जातियों के आधार पर बंटने लगते हैं तब तब हम विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं। रंग भेद के उदाहरण और ना ही बार बार दोहराना युक्ति संगत है। इनसे हमारा कितना विनाश हुआ है ये सभी जानते हैं। यदि फिर भी हम धार्मिक मतभेदों के आधार पर एक दूसरे पर वार करते हैं तो ये भावी पीढ़ियों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा, और अतीत के संतों और ऋषियों ने जिन ऊंचे आदर्शों का स्वप्न देखा था उनके प्रति विश्वासघात होगा। यदि हम मानवीय हैं, मानवता के भविष्य में दिलचस्पी रखते हैं

0: तो हमें यकीनन सचेत होना होगा। वो कहा करते थे, यदि हम सफलता चाहते हैं तो हमें संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक जीवन संघर्ष, जल्दबाजी और पेचीदगी से भरा है। ऐसा लगता है कि संतुलन, संयम और अवकाश का अंत हो गया हो। बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं जब हम किसी परिस्थिति की पूरी तस्वीर सही पृष्ठभूमि में देख सकें। आज आपको भ्रमित करने वाले और चाटुकार मित्र हजारों मिल सकते हैं, परंतु मेरी दृष्टि में वो एक मित्र जो आपका स्वस्थ समीक्षक हो हजारों से बेहतर है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व संयम, संतुलन और निष्पक्षता को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, तभी आप न्यायसंगत कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आप सुन रहे थे श्रीनिवास शास्त्री के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 6:30 हो चुके हैं। आप प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे कविता कृष्णमूर्ति और मिताली सिंह। संगीत होगा सतीश भाटिया का। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय होगा पशुओं में होम्योपैथिक चिकित्सा। और 7:10 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेगा डॉक्टर तिरुपति नाथ से ग्लूकोमा कारण और निदान पर वार्ता।

प्रातः 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आसपास। दीपाली गौड़ के गाए हुए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान और बागेश्वरी कामर से राग तोड़ी में शहनाई जुगलबंदी। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम में हम बात करेंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में और सुनवाएंगे उन्हीं की फिल्मों से कुछ नगमे। कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक और प्रवासी भारतीयों का देश के विकास में योगदान। 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनी जा सकेगी। डिजिटल युग में पारिवारिक रिश्ते पर चर्चा, साथ ही आप सुनेगा डी एडिक्शन काउंसलर नेहा सिंह से अनिंद्र सिंह की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय होगा किशोरों में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत। 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे अपने पसंदीदा फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।

प्रस्तुत करता हूं यानेंद्र सिंह और संपादक होगा विशेषता शर्मा का। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा CBDC। शाम 6:00 कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आप सुनेंगे खेती में जैव उर्वरकों के प्रयोग से लाभ पर वार्ता। वार्ताकार होंगी आभा पाठक। इसी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी।

शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही सुनिएगा बनवारी लाल कुशवाहा की वार्ता, युवाओं के लिए सुनहरे अवसर अग्निपथ योजना। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा मनी टॉक प्लस मंथन और 10 बजे आप सुनिएगा लखनऊ केंद्र से खेल दर्पण। रैन 10:30 पर आकाशवाणी आगरा से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अकील अहमद खान से राग मारू बेहाग में ख्याल गायन। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

माया नगरी के राजा शील निधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शील निधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुभत्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे कविता कृष्णमूर्ति और मिताली सिंह। संगीत था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय है पशुओं में होम्योपैथिक चिकित्सा।
1: होम्योपैथिक पद्धति से रोगी पशुओं का उपचार करने के लिए पशुपालकों को सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। पशुओं के प्रत्येक रोग के कुछ लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के अनुसार ही औषधि का चुनाव करना चाहिए। जिस औषधि को प्रयोग में लाया जाए उसके कम से कम 3 लक्षण मिलने अनिवार्य होते हैं। अधिकतर पशुओं के रोग मानसिक और शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त दूसरों द्वारा अनुभव लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पशु द्वारा कुछ ऐसे भी संकेत दिए जाते हैं जिससे रोग के बारे में जानकारी मिल जाती है, इन्हें ध्यान से देखें। सामान्य नए रोग के नई दिशाओं के उपचार हेतु निम्न औषधि क्रम जैसे 6 से 30 पोटेंसी का प्रयोग करने से लाभ मिलता है, जबकि पुराने रोगों में 200 से 1000 क्रम का प्रयोग किया जाता है। रोगी पशु को औषधि पानी के साथ, गेहूँ तथा जौए के आटे के साथ अथवा रोटी पर रखकर खिलाई जाती है। रोगी पशु जब खाने की स्थिति में नहीं रहता है तो औषधि का आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर के साथ त्वचा में इंजेक्शन द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाया जा सकता है, जिससे लाभ होता है। अधिकतर रोग के उपचार में औषधि शक्ति एवं मात्रा का उपयोग किया जाता है। जहां पर इसकी उपयोग नहीं किया गया है वहां पर 30 पावर शक्ति की 6 से 10 बूंद अथवा 40 नंबर की 4 से 8 गोली एक मात्रा में पर्याप्त होती है। 6 से 30 क्रम की औषधियों को 4-4 घंटे पर तथा 200 से 1000 क्रम की औषधियों को सप्ताह में एक बार अथवा 14 दिन पर या रोग की स्थिति के अनुसार शीघ्र भी दिया जा सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति टीकाकरण के विरुद्ध नहीं है। इस चिकित्सा के साथ साथ सभी टीकों का उपयोग बिना किसी हिचकिचाहट के निर्बाध रूप से किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि एक समय में एक औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब पशुपालक भाइयों को मैं कुछ मुख्य रोगों के संबंध में जानकारी कराना चाहूँगा। बच्चा होने में कष्ट होना। बच्चा निकलने के प्रयास में मादा पशु बार बार जोर लगाता है फिर भी बच्चा नहीं निकल पाता। कभी कभी यह लक्षण उस समय भी देखने को मिलता है जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह नहीं खुल पाती है। ऐसी स्थिति में अपने पशु को पल्सेटिला 200 की 5 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार देकर प्रतीक्षा करें। 1-2 घंटे में बच्चा ना होने पर कोलोफाइलम 6 और सेवाइन 6 का क्रमानुसार प्रयोग करें। दूध कम होना या सूख जाने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में एग्नस कास्टस 30 पोटेंसी की 6-6 घंटे पर दिन में देना चाहिए। पल्सेटिला 30 पोटेंसी 2 मात्रा में सुबह शाम कुछ दिन तक देते रहना चाहिए। ऐसा फिटिडा

सिक्स पोटेंसी की दो मात्रा दिन में प्रयोग करना चाहिए। चाइना 30 पोटेंसी की दो मात्रा दिन में प्रयोग करना चाहिए जब पशु को साइकिल बुखार आ जाता हो। कैकेरिया फॉस 200x पोटेंसी की 10 गोली दिन में दो बार 3 या 4 दिन तक दी जा सकती है। चेमोफिला अम्बलाटा 6 पोटेंसी की दिन में दो बार देने से भी लाभ होता है। थनाला रोग या मैस्टाइटिस होने की स्थिति में नए ब्याए हुए पशु, अधिक दूध देने वाले पशु तथा गंदे हाथों से दूध दुहने अथवा दूध दुहने के गलत ढंग के कारण पशु के थन में सूजन आ जाती है तथा थनों से पानी मिला फटा दूध की तरह अथवा खून मिला मवाद निकलने लगता है। ऐसे पशुओं में यह रोग होने पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे थनों में सूजन का आ जाना, थनों में लाली आ जाना और उसका गर्म रहना। पशु थन छूने नहीं देता है, दूध में छिछड़े या गांठें निकलती हैं। रोग बढ़ जाने पर दूध की मात्रा में कमी आ जाती है तथा दूध के साथ मवाद मिला खून निकलने लगता है। उचित इलाज न होने पर थन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसे थनैला रोग में रोग की पहली दशा में एक्विनाइड 30 पोटेंसी की एक मात्रा शाम को तथा प्रातः सल्फर 200 पोटेंसी की एक मात्रा देने से लाभ होता है। थन में सूजन तथा लाली रहने पर बेलाडोना 6 पोटेंसी की दिन में 4-4 घंटे देने से भी लाभ होता है। रोग का प्रभाव जब पशु के थन तक पहुंच जाता है तो आयन में गांठें पड़ जाती हैं। ऐसी दशा में फाइटोलका 200 पोटेंसी की 3 दिन तक देने से सल्फर 1000 की एक मात्रा देने से लाभ होता है। थन से निकलने वाले दूध की दहार में रुकावट होने पर थूजा 30 पोटेंसी की 2-3 दिन तक देने से लाभ होता है। आयन के कड़ा होने पर कोनियम मैक 1000 पोटेंसी की एक खुराक रोज देनी चाहिए। फाइटोलेका कोनियम हीपर सल्फ मायरेस्टिका कलकेरिया फ्लोर प्रत्येक 200 पावर की पोटेंसी हर एक की 10 से 20 बूंद एक प्याली पानी में डालकर पिलाने से निश्चित ही लाभ होता है। इस थन रोग के थनों को सेकाई कदापि ना करें। लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर, ऐसे लंगड़े बुखार में हीपर सल्फर 200 पोटेंसी की ज्वर और स्पर्श असह होने पर इस औषधि का प्रयोग करें। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी की यह इस रोग की मुख्य औषधि है। सूजन को छूने से चरचर की आवाज होने पर इसका प्रयोग 30 पावर में 1-1 घंटे पर करना चाहिए। एचिनेसिया 3x पोटेंसी की दिन में 3 बार किसी भी औषधि के साथ दिया जा सकता है। 20 लाख यूनिट पेनिसिलिन तथा 15 मिलीलीटर यूनिमाइसिन के टीके देने से पशु निश्चित ठीक हो जाता है। गलाघोटू या हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, पशु में यह रोग महामारी के रूप में होता है, अतः जैसा कि पूर्व में बताते हैं इसके लिए पशु को टीका लगवाना अधिक हितकर है। रोग हो जाने पर निम्नलिखित औषधियां प्रयोग की जा सकती हैं। एक्विनाइड 30 पोटेंसी, इस औषधि का रोग प्रारंभिक अवस्था में ही देना चाहिए। मर्क साइनाइड 200 पोटेंसी की रोगी पशु की दशा में सुधार होने पर 1-1 घंटे पर देना चाहिए। सुधार न होने पर औषधि देने का समय 2 घंटे से कर देना चाहिए। आर्सेनिक 30 पोटेंसी की, उपयुक्त उपचार से सुधार न दिखाई पड़ने पर इस औषधि को 2-3 घंटे पर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त लैकेसिस 200 क्रोटेलस 30 पोटेंसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। एलोपैथिक में इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 2.5 ग्राम तथा जेंटामाइसिन 30 मिलीलीटर तथा एनाल्जिन का प्रयोग किया जाता है। खुरपका तथा मुंहपका, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं, इसके उपचार हेतु मर्कसाल 200 पोटेंसी की प्रतिदिन एक मात्रा खिलाने से तथा पैरों और मुंह में बोरेक्स पाउडर की गरी के तेल में फेंटकर लगाने से घाव शीघ्र भर जाते हैं। अधिक बुखार होने पर बेलाडोना 30 का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। समूह में एक बार पशु के प्रभावित होने पर प्रभावित पशु के मुंह की लार अन्य पशुओं के लगा देने से उस समूह के सभी पशुओं में बीमारी का प्रकोप एक साथ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोडिस्ट्रिस कैन मदर टिंचर का मलहम घी में या ग्लिसरीन में मिलाकर मुंह में लगाने से शीघ्र लाभ होता है। कार्सिनोसिस 30 पोटेंसी की 5 बूंद सुबह शाम देने से रोग नियंत्रित हो जाता है। इसका प्रयोग रोग की प्रारंभ

0: प्राथमिक दशा में करने से रोग शीघ्र ठीक हो जाता है। पशुओं द्वारा धोखे से खाए गए विषों का उपचार, जैसे हरी हाइड्रोसाइनिक एसिड, चरी के माध्यम से जो पशु खाते हैं उनके उपचार हेतु सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो का 20% घोल सुई की सहायता से नस में देना चाहिए। इसके साथ ही 10 से 15 ml 20% सोडियम नाइट्रेट का घोल सुई द्वारा नस में देना चाहिए। संभव ना होने पर 20 ग्राम आधा लीटर पानी में घोलकर पिला दें या आटे की लोई में खिला दें। पानी का शीरा, गेहूं का आटा अथवा जौ का आटा घोलकर पशु को पिलाना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुन रहे थे डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता, पशुओं में होम्योपैथिक चिकित्सा। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयू

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG

परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे

वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: understanding of governance, policy deliberation, and parliamentary functioning. Union Public Service Public Commission Service, UPSC, has declared the result of Civil Services Preliminary Examination, CSC, for this year. UPSC informs that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. The candidates can download the prelims result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde, marking its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Meanwhile, Saudi Arabia and Uruguay drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम विवेक 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर तिरुपति नाथ से वार्ता। ग्लूकोमा कारण और निदान।
2: तो दोस्तों, काला पानी या ग्लूकोमा, जिसके बारे में मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सुना होगा, ये एक ऐसी नेत्र संबंधी बीमारी है जो कि आपको अंधेपन की तरफ भी ले जा सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि काला पानी दुनिया में अंधेपन का दूसरा मुख्य कारण है। अब बात समझने की यह है कि काला पानी होता क्या है। वास्तविक तौर पर अगर हम देखें तो काला पानी में जो आंख के अंदर एक द्रव्य होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, उसके बनने और बहने के बीच का जो सामंजस्य बिगड़ जाता है, उसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो आंख के अंदर के पानी का जो दबाव है, वो अगर नॉर्मल ना रह के या सामान्य ना रह के ज्यादा हो जाएगा, तो वो आंख के अंदर काला पानी या ग्लूकोमा जैसी बीमारी को उत्पन्न करेगा। यह बीमारी जो काला पानी, ग्लूकोमा, संबल वायु, इसके अनेक नाम है, इस बीमारी के होने के कुछ मुख्य रिस्क या कह सकते हैं कि मुख्य कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बीमारी आंख के अंदर हो सकती है। जैसे कि परिवार में अतीत में किसी को काला पानी रहा हो, ऐसे परिवार के अंदर ये बीमारी वंशानुगत चलती रहती है। 40 की उम्र के बाद अमूमन जो एशियन पॉपुलेशन, यानी कि जो यहाँ की जनता है, एशिया की जनता है, उसके अंदर देखा गया कि 40 या उससे ज्यादा उम्र में ये बीमारी वास्तविक तौर पर पाई जाती है। किसी को बहुत ज्यादा आंख के अंदर नंबर हो, चाहे वो मायोपिया यानी माइनस का नंबर हो या वो प्लस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया हो, ऐसे भी मरीजों को काला पानी होने की संभावना अधिक होती है। जिन मरीजों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर यानी कि मधुमेह और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनके अंदर भी काला पानी ज्यादातर पाया जाता है। किसी भी आंख में जिसमें कभी कोई चोट लगी हो, ऐसी आंखें भी काले पानी में आगे चल के परिवर्तित हो सकती हैं। तो अगर हम अन्य शब्दों में कहना चाहें तो काला पानी एक गुप्त हत्यारा है, क्योंकि अधिकांश रोगियों को प्रारंभिक तौर पर कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं, जिसके कारण वो इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। जबकि काला पानी या ग्लूकोमा चुपचाप रोगी को स्थायी अंधेपन की ओर धकेल देता है। ये एक दीमक की तरह नजर को धीमे धीमे खत्म करता रहता है और मरीज को पता भी नहीं चलता। तो अब समझने की बात यह है कि हम इस बीमारी के बारे में कैसे पता कर पाए कि ये बीमारी हमें है या नहीं है। यही चीज को जानने के लिए हमें अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को समय समय पर दिखाना चाहिए और आंख की पूर्ण तरीके से पूर्ण जांच करानी चाहिए। और अगर जो नेत्र चिकित्सक आपका परीक्षण कर रहा है, उसको ऐसा कोई भी लक्षण आपकी आंख में नजर आता है जो कि काले पानी की तरफ या ग्लूकोमा की तरफ या संबल वायु की तरफ इशारा करता है, तो उस नेत्र परीक्षक के द्वारा बताए गए वे जो विशेष परीक्षण होते हैं, कुछ विशेष जांचें होती हैं, उनको कराया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस बीमारी का सही तौर पे क्या कारण है, क्यों ये आंख में हो रहा है और हमें उसके इलाज में क्या क्या करना है, इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं फिर ये बताना चाहूंगा कि नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा बताई गई जांचें कराना जरूरी होता है, जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम में उस नेत्र विशेषज्ञ को और सफलता मिल सके। प्रारंभिक तौर पे जब काले पानी का पता चलता है, तो या तो मरीज को वो काला पानी बहुत शुरुआती दौर में होता है, या हो सकता है कि काफी आगे बीमारी बढ़ चुकी हो। तो बीमारी के स्टेज यानी कि बीमारी कितनी गंभीर है, उस गंभीरता के ऊपर ही उसका इलाज निर्भर करता है। अगर आपका काला पानी के बारे में पता चल जाना, समझ लीजिए कि अगर काला पानी का पता चल जाता है कि आपको

0: बहुत जल्दी शुरुआती स्टेज में पता चल गया कि बहुत अभी गंभीर नहीं है, अभी शुरू ही हुई है बीमारी, तो इस बीमारी से आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। परंतु अगर आपका नुकसान या आपकी आंख का नुकसान काफी हद तक बढ़ चुका है और आपको बीमारी का पता अंतिम क्षणों में चलता है, यानी कि बीमारी काफी गंभीर हो चुकी है, उसने काफी नुकसान आपको पहुंचा दिया है, और तब हमें पता चल पाता है कि हाँ अब हमारी आंख में काला पानी है और इससे नुकसान काफी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान हो चुका है वो तो हमेशा के लिए हो गया। आगे आंख के अंदर जितनी भी ताकत है उसे बचाने का प्रयास करना ही इसका इलाज है। अन्य शब्दों में काले पानी का इलाज आगे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए होता है। जो नुकसान हो गया उसको वापस पूर्ण रूप से नॉर्मल नहीं किया जा सकता। काला पानी या ग्लोकोमा, इसका उपचार दवाइयों के रूप में है, जो कि बूंद की दवाइयां होती हैं, खाने की दवाइयां होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के लेजर होते हैं जो आंख की सिकाई होती है, जिसको हम और साधारण भाषा में आंख की सिकाई बोलते हैं। और अगर यह सभी प्रयास हमारे सफल नहीं हो पाते हैं या हमें जितना असर उनका चाहिए उतना असर नहीं मिल पाता है, तो हमें फिर काले पानी का ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन काले पानी का आखिरी इलाज है, और जिनके अंदर अगर काले पानी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो ऐसी आंखों में अंधेपन की तरफ जाते हुए कदमों को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों सूर्योदय सुनाई नहीं देता है, खूबसूरती जो सूर्योदय की है वो सिर्फ देखी जा सकती है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी आंखों की रोशनी को बचाए रखने के लिए समय से नेत्र परीक्षण कराते रहें, समय से अपनी आंखों का अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराते रहें। कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी और काला पानी जैसी बीमारी, इनका इलाज हमें जिंदगी भर लेना होता है, तो उस लय को बीच में न तोड़ें और अपने जीवन को रोशनी से भरपूर रखें। अपने जीवन में अपनी आंखों की जो कीमती कहेंगे बहुमूल्य गिफ्ट भगवान ने जो आपको दी है उसे बचा के रखें।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर तिरुपति नाथ से वार्ता। वार्ता का विषय था ग्लूकोमा, कारण और निदान।

0: अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति

0: वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गईं। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
3: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिक करण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। SIT की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि SIT के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के DM के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
4: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने

0: का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT पहुंची अयोध्या, जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: अभी आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आकाशवाणी आगरा के पावन तरंगों पर मैं आपका रेडियो साथी है सागर जग्गी आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष जानकारी पूर्ण कार्यक्रम आसपास में। हम सब की जिंदगी हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं से गहराई से प्रभावित होती है। कभी स्थानीय मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों की गूंज, कभी सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियान, तो आपके हित और सुविधा से जुड़ी अहम सूचनाएं, इन सब का समावेश है इस कार्यक्रम आस पास में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर वह जानकारी देंगे जो न सिर्फ आपको जागरूक बनाएगी बल्कि समाज से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगी।

तो चलिए श्रोताओं शुरू करते हैं कार्यक्रम आसपास। आज से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। गर्मी के बीच विद्यार्थियों को कराई जाएगी पढ़ाई। करीब 25 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिले के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलवार से फिर बच्चों की चहल पहल और शरारतों से खिल उठेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि

गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार को कई विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों ने सोमवार को विद्यालय पहुंचकर परिसर की साफ सफाई कराई, कक्षाओं में बच्चों को बैठने की व्यवस्था सुधारी, रसोई, पेयजल, शौचालय और परिसर की स्थिति को सुधारा, जिससे मंगलवार को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जब विद्यार्थी पहुंचे तो उन्हें स्वच्छ परिसर मिले। साथ ही शिक्षक तैयारी कर रहे हैं कि विद्यालय खुलने पर सभी बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर और उन्हें पुष्प भेंट कर किया जाएगा। साथ ही शासन के आदेश अनुसार मिड डे मील में उन्हें कुछ मीठा तैयार कराकर परोसा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि लंबे अवकाश से लौटने पर विद्यार्थियों की को बेहतर वातावरण व अनुभूति मिलेगी। शिक्षक अपनाएं आधुनिक शिक्षण पद्धति। प्रश्न पूछने वाले छात्र करें तैयार। शिक्षकों को तकनीकी के साथ आधुनिक शिक्षण पद्धति में पारंगत होना होगा, श्रोताओं, जिससे वे ऐसे छात्रों को तैयार कर सकें जो प्रश्न पूछें। इसे ही नवाचार और शोध का रास्ता निकलेगा। आगरा कॉलेज में सोमवार को शिक्षक संवाद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा में सुधार पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित शिक्षक संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी विकास, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा, आधारभूत संरचना और उच्च शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। श्रोताओं, विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था में किया बदलाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित न कर पाने पर प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सन सत्र 2026-27 से स्नातक और परास्नातक की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। कुल सचिव ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत सत्र 2026-27 से विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं अब ब्रह्म परीक्षकों द्वारा कराई जाएगी। सम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित महाविद्यालयों द्वारा आंतरिक स्तर पर कराई जाएगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि ये नियम उन विषयों पर लागू नहीं होगा जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा पूरे शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार ही आयोजित की जाती है। श्रोताओं, एकलव्य स्टेडियम में शुरू हुआ योग सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को किया गया। योग सप्ताह के पहले दिन सुबह करीब 1500 लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। इसके बाद स्टेडियम से प्रतापपुरा चौराहे तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने सभी लोगों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर योग करने के लिए प्रेरित किया। श्रोताओं, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। सभी कोर्स में जुड़ेगा AI। पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ाई के पुराने तरीकों में बदलाव की तैयारी है। पाठ्यक्रम में आधुनिक बदलाव पर विचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि सभी कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की उम्मीद है। इससे छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और पढ़ाई की अहमियत भी बढ़ेगी। जिले में 3 सरकारी और 1 एडेड पॉलिटेक्निक संस्थान है। इनमें ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी,

में लेदर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। मनकेड़ा स्थित पॉलिटेक्निक में सिविल, केमिकल और इंजीनियरिंग ब्रांच है। वहीं शमशाबाद पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। अभी तक इन सभी ब्रांचों में पुराने तरीके से पढ़ाई हो रही थी। छात्र किताबी ज्ञान पर निर्भर रहते थे और पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग सीमित थी। अब समय बदल चुका है। पॉलिटेक्निक शिक्षा विभाग ने नए पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बना ली है। नई व्यवस्था में सभी कोर्स में AI को शामिल करने की तैयारी है। इससे छात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलेगा। सभी AI का प्रयोग कर लेदर टेक्नोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में नई स्किल्स सीख सकेंगे।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

आज 3 घंटे की होगी बीएड परीक्षा। श्रोता, विश्वविद्यालय मंगलवार को बीएड की परीक्षा कराएगा। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार 16 जून को बीएड प्रथम वर्ष 2026 के बीडी 106 प्रश्न पत्र की परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ केंद्र पर पहुंचे। साफ सफाई संघ आज खुलेंगे परिषदीय स्कूल। श्रोताओं, परिषदीय स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गए हैं। मंगलवार से सभी स्कूल समय से खुलेंगे। रोली व टीका लगाकर बच्चों का स्वागत होगा। मेन्यू के आधार से स्कूल में मिड डे मील तैयार होगा। पहले दिन बच्चों को मीठा भोज्य पदार्थ बांटने के निर्देश दिए हैं।

आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, दो विकेट लेते ही विश्व रिकॉर्ड बनाएंगी दीप्ति। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट के मामले में एक नया मुकाम हासिल करने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के साथ दीप्ति ने 354 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए हैं। अब बुधवार को होने वाले दूसरे मैच में दो विकेट चटकाते ही वे इतिहास रच देंगी। 355वें विकेट पर वे झूलन गोस्वामी की बराबरी कर लेंगी और 356वें विकेट पर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। मार्च 2027 तक जिले में घर घर मिलेगा गंगा जल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में हर घर नल से जल योजना के तहत आगरा और फिरोजाबाद जिलों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। करीब 4,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कछुआ गति को देखकर केंद्रीय मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि योजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। श्रोताओं, वक्त है कुछ अहम और जरूरी सूचना देने का, तो शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। ये एक महिला है, इनका शुभ नाम है कांति देवी, पत्नी श्री ब्रजेश कुमार, निवासी नगला मोती, थाना कुर्रा, जनपद मैनपुरी। इनकी उम्र करीब 40 वर्ष है और कद करीब 5.5 फुट है। अब हम आपको इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको सहायता मिले इनको पहचानने में। रंग गोरा है, हरा कलर का सूट और पैरों में सादा चप्पल पहन रखी है। दिनांक 7/5/2026 को रात्रि 8 बजे गुस्सा होकर घर से चली गई, जो अभी तक वापस नहीं आई है। काफ़ी प्रयास करने पर भी श्रीमती कांति देवी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कृपया इनके संबंध में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो इन नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। 7465884177 और 9454403925। फिर से बता देते हैं हम आपको, 7465884177 और 9454403925। इस पते पर भी आप सूचना दे सकते हैं। नगला मोती, थाना कुर्रा, करहल, जनपद मैनपुरी। श्रोतों, एक और महिला हैं जिनका शुभ नाम है डॉली, पत्नी श्री बलराम सिंह, निवासी हाजीपुर, सौज, थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी। दिनांक 22/4/2026 को घर से फिरोजाबाद के लिए सुबह 8:30 बजे निकली थी, तब से ही ये लापता है।

काफी तलाश करने पर भी कहीं पता नहीं चल सका है। आपको अब इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पहचानने में सहायता मिले। रंग इनका गेहुआ है, उम्र करीब 37 वर्ष है, आंख नाक कान औसत है, कद 5 फुट 2 इंच है। इन्होंने पीला रंग का सूट और काली पजामी पहन रखी है। मैं आपको कोई भी जानकारी मिले तो आप इस पते पर और इन निम्न नंबरों पर साझा करने का कष्ट करें। पता हाजीपुर सौज थाना कुर्रा जिला मैनपुरी। नंबर इस प्रकार हैं 8439649044, 9454401264 और 9454403925। एक और व्यक्ति हैं साथियों जो कि एक पुरुष हैं जिनका शुभ नाम है धर्मवीर उर्फ बबलू। उम्र करीब 38 वर्ष है, निवासी लेखराजपुर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी। दिनांक 24 अप्रैल 2026 को घर से बिना बताए कहीं निकल गए और तब से ही बेलापता है। अब हम इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पहचानने में सहायता मिले। रंग गेहुआ है इनका, आंख नाक कान औसत है। इन्होंने नीली टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहन रखी है। कद करीब 6 फुट है। आप इन नंबरों पे और इस पते पर जानकारी साझा कर सकते हैं। 8368575710, 9454401264 और 9454403925। पता इस प्रकार है लेखराजपुर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी।

इसी के साथ ये कार्यक्रम आसपास यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
4: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
3: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा

कर रहे हैं। तीन दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से

0: में 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7

0: संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी

0: संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini.

0: बेल्जियम और मिस्र का मैच एक एक गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आला तरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि यह एजाज भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रिटिश-लावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल है। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क्याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकतदार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। اس کے بعد وزیراعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔

0: फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शर्हों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस एलएनजी लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। एलएनजी बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूह पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमरीका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फीको की मुलाकात, दिफा मसनूई जहानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समझ देने का ऐलान। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा स्विट्जरलैंड में 19 जून को बाजाब्ता दस्तखत होंगे। अमरीका ईरान मुफाहमतनामे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, किसानों को पहली परवाज का तोहफा, मुल्क भर के 45 शहरों के लिए यहां से परवाजें दस्तयाब होंगी।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। स्लोवाकिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वजीर आजम मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वजीर आजम और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाकई अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धुन कहती है गीतांजलि सुनिए और दिल से मुस्कुराइए। तो आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म राजा हिंदुस्तानी से आवाज थी उदित नारायण की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में।

हिंदी पर के लिखे हुए गीत को आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कोयला से। संगीतकार थे राजेश रोशन। चलिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म परदेश से कुमार सानू की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार नदीम श्रवण।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। इसी के साथ हमारे प्रिय कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मेरठ और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्र के माल रोड पर 150 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण अभियान में छावनी परिषद की संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्षिता चमाणिया ने छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया और बताया कि छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र में 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 1001 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभी 150 पौधे लगाए गए हैं जबकि 500 पौधे कैंट क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इस स्थान को उपवन नाम दिया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बचे हुए पौधे कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे जिन्हें वे अपने आसपास घर मंदिर या पार्क में लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि माल रोड उनके बचपन में ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती थी क्योंकि यहाँ घने पेड़ हुआ करते थे। समय के साथ सड़क के एक हिस्से से पेड़ कम हो गए, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से यहाँ फिर से हरियाली बढ़ाने की पहल की जा रही है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुँचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हॉर्टिकल्चर ब्लॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश की जनता यह जान चुकी है कि उसका हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यूरिया के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय और कृषि सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान, नई तकनीक और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सरकार इसके विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थित अटल सभागार में वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल द्वारा जनपद के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मेडल के साथ 21,000 रुपए की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अबीदा, इंटरमीडियम में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा वंशिका उपाध्याय समेत 19 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मेरठ में 119 किलोमीटर की सफाई अब आधुनिक मशीनों से होगी। इस योजना का मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस योजना के तहत सफाई पर एक महीने में करीब 1,23,00,000 रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में मुख्य मार्गों की सफाई करनी होगी जिनकी लंबाई 119 किलोमीटर बैठती है। सांसद अरुण गोविल का कहना है कि उनकी कोशिश है मेरठ को इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 बनाना, जबकि महापौर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि इंदौर और सूरत की तर्ज पर मेरठ की सफाई व्यवस्था करने की हर कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक बड़ा प्रयास है। मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने सर्किट हाउस में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर उन्हें केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास भवन सभागार में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित मामलों की जनसुनवाई की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद के माध्यम से योजनाओं की सफलता की कहानी सुनी और महिलाओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने बताया,
2: एम्पावर्ड जो महिलाएं हैं जिन्होंने योजनाओं के साथ चलते हुए खुद को बहुत अच्छे तरीके से समर्थ बनाया है, काम करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव आया।

0: है और ये बदलाव मुझे बहुत पॉजिटिव लगा है। महिलाओं का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घर में उनकी निर्णय प्रक्रिया में की सहभागिता बढ़ी है, समाज में भी अभी आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है।
1: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
2: शामली जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए अब हर गाड़ी पर जीपीएस का पहरा रहेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के वाहन स्थान ट्रैकिंग सिस्टम VLTS के तहत बिना सुरक्षित ओटीपी के यूरिया की अनलोडिंग मुमकिन नहीं होगी। शामली में इस हाईटेक व्यवस्था का सफल ट्रायल कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत रैक पॉइंट से बफर गोदामों और सहकारी समितियों तक खाद ले जाने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी लाइव मॉनिटरिंग कंपनियों के मुख्यालय समेत जिला कृषि अधिकारी करेंगे। यदि कोई वाहन तय रूट से भटकता है तो तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाएगा। हाल ही में KFL कंपनी की 1068 मीट्रिक टन यूरिया इसी तकनीक से सुरक्षित पहुंचाई गई। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
3: रैक पॉइंट से जाने वाले सभी ट्रक GPS OTP वेस्ट माध्यम से भेजे जा रहे हैं और जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं उस स्थान पर OTP डालने के बाद ही उतरने की व्यवस्था कराई गई है तथा वाहन जो उर्वरक लेकर जा रहे हों उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कराई जा सके।
2: शामली जिले में मानसून की आहट के साथ ही जिले में खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस बार 22,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। इसमें अकेले 18,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए प्रमाणित बीजों पर 50% तक का अनुदान और पात्रता के अनुसार निःशुल्क मिनी किट देने की घोषणा की है। इसके लिए विभागीय एग्री दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि सभी विकास खंडों के गोदामों पर धान, उड़द, मूंग और मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया गया है। 15 जून से मुख्य बुआई शुरू होने की संभावना को देखते हुए किसान खेतों को तैयार करने और धान की पौध लगाने में जुट गए हैं। विभाग ने किसानों से जल्द बुकिंग कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। शामली जिले में यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से उपजाऊ मिट्टी बंजर होने के कगार पर है, जिससे कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गिरती सेहत और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने जून माह में विशेष खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, ताकि किसानों को जहर मुक्त और संतुलित खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है बल्कि अति प्रयोग समस्या है, जिसे सुधारने के लिए सरकार जहर मुक्त और जागरूक खेती पर दे रही है। शामली में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार 20,000 की आर्थिक सहायता देगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभ दिया जाएगा। हालांकि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जाकर जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या निजी इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। शामली जिले के उपभोक्ताओं और किसानों को जल्द ही लो वोल्टेज अघोषित कटौती से मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र के 6 प्रमुख बिजली उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत टिटोली, बनत, जलालाबाद, थाना भवन टाउन, कमालपुर और देवी मंदिर कैराना विद्युत उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार कर नवीन पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू होगा, जिससे गर्मियों में ओवरलोड और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। शामली जिले को वेस्ट यूपी का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कांधला में मिनी उद्योग क्षेत्र की स्थापना के तहत 11 भूखंडों और 1 सेट के आवंटन की इन नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग निदेशालय की इस बड़ी पहल से जिले में भारी निवेश आएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कांधला बुढ़ाना मार्ग पर स्थित इस उद्योग क्षेत्र में भूखंडों को 99 वर्ष की लीज पर विनिर्माण इकाइयों को आवंटित किया जा रहा है। कांधला और कैराना के बीच बन रहा PSC कैंप उद्यमियों को मजबूत सुरक्षा कवच देगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पारदर्शी ई ऑक्शन से होने वाला यह कास जिले के राजस्व और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय

0: समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: जिले की हलचल में आज आपने सुनी मेरठ और शामली जिलों की हलचल।
2: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम, गीत मंजू शाह का। पेश है हिंदी फिल्म जगत के वो अनमोल गीत जिन्होंने दशकों तक दिलों पर राज किया है। कभी रोमांस की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी दोस्ती की मस्ती, हर एहसास को बखूबी बयां करते हैं गीत। आज फिर गूंजेंगे आपकी धड़कनों में।

आप सुन रहे थे फिल्म अलबेला से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था सी रामचंद्र का। अगला गीत है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से किशोर कुमार की आवाज में, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और उसमें संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कुछ धुएं दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। आप सुन रहे थे फिल्म काला पानी से ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, जिसको लिखा था मजरू ने और संगीत था आर डी बमन का। आइए आप सुनते हैं हावड़ा फिल्म हावड़ा ब्रिज से गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार ओपी नैयर।

आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ती से एक गीत। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी, गीतकार मजरू और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम गीत मजुषा यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात एक

1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं दीपाली गौड़ से ये लोकगीत। हारमोनियम पर होंगे गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर होंगे राधा मोहन शर्मा और बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद। अरे मेरे नैनन में बसे नंदलाल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

चलो परिक्रमा करावे। आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम लोक संगीत में। गायक कलाकार थी दीपाली गौड़, संगीतकर्ता में हारमोनियम पर थे गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राधा मोहन शर्मा और बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम लोक संगीत यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुर सरिता का। सदाबहार फिल्म संगीत की वो धारा जहां हर सुर में एहसास है, हर गीत में कहानी है और हर धुन दिल से दिल का रिश्ता जोड़ती है। तो आइए इन सुनहरे नगमों के साथ यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

तू मिले या ना मिले ये गम नहीं, तेरे गीत हर पल मेरे संग है कहीं, तेरी आवाज बन गई है मेरी सांसों की तान, जैसे हर धुन में बसा हो बस तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। आपने सुना फिल्म जवी मैच से ये गीत शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाजों में। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम। चलिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म फुकरे से सोना मोहापत्रा की आवाज में, जिसको लिखा है मुन्ना धीमान ने और संगीत है राम संपत का।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम सुर सरिता में। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, जो कि फिल्म मेट्रो से सोहेल की आवाज में, जिसको लिखा है सईद कादरी ने और संगीत है प्रीतम का।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है।

में आवाज नहीं होते, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। आप सुन रहे थे फिल्म बजरंगी भाईजान से गीत केके की आवाज में। गीतकार थे कौसर मुनीर और संगीतकार प्रीतम। आइए अब सुनते हैं अगला गीत सोनू निगम की आवाज में फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार प्रीतम।

कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, बात ना करो तो दिल नहीं लगता। आप सुन रहे थे लखनऊ सेंट्रल से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, जिसको लिखा था कुमार ने और संगीत था अर्जुन हरजाई का। इसी के साथ ये कार्यक्रम सुर सरिता यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज चुके हैं श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान और बागेश्वरी कामर से राग तोड़ी में शहनाई जुगलबंदी।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और बागेश्वरी कामर का राग तोड़ी में शहनाई की जुगलबंदी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार, अपने रेडियो साथी नीतू दुबे के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर और आनंद लेते रहिए गीत संगीत और जानकारियों का। साथियों, एक समय था जब हम सबको रेडियो के पास बैठना होता था, तभी हम कार्यक्रम सुनते थे। लेकिन समय बदला, चीजें बदली और देखिए, कभी सोचा था कि वही रेडियो हमारे साथ हर समय हमारे हाथ में होगा। जी हां साथियों, आज आप वही रेडियो अपने मोबाइल पर कहीं भी सुन सकते हैं, तो है ना कितना आसान। साथियों, रेडियो पर कार्यक्रम सुनने का अपना एक अलग ही अंदाज है। आप कुछ भी काम करिए और सुनते रहिए अपने मनपसंद कार्यक्रम। तो साथियों, अब हम बात करते हैं।

करते हैं अपने कार्यक्रम की, यानी कि आज के कलाकार की। तो हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, उद्यमी और राजनीतिक, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक के अपने फिल्मी करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें से अधिकतर हिंदी और बंगाली भाषाओं में हैं, कुछ भोजपुरी, तेलुगु, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी में भी हैं। साथियों, अब हम उस कलाकार का नाम आपको बता देते हैं। जी हां साथियों, उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती।

तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। इनका जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। साथियों, कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। साथियों, आपको पता है उन्होंने मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल की है। जैसा कि हर कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, वैसे ही मिथुन जी के जीवन में भी काफी कठिनाइयां रहीं। इन्होंने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृग्या से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी पहली फिल्म के बाद कुछ फिल्मों में सहयोगी भूमिकाएं भी निभाईं, लेकिन उस समय उन्हें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत एक न एक दिन तो रंग लाती जरूर है, बस काम करने का जुनून होना चाहिए। पता है उन्हें बड़ी सफलता मिली फिल्म डिस्को डांसर से, जो कि 1992 में आई थी।

साथियों, डिस्को डांसर एक म्यूजिकल फिल्म थी। ये फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म के साथ ही दूसरी म्यूजिकल फिल्में जैसे कसम पैदा करने वाले की और डांस डांस में इन्होंने एक बेहतरीन डांसर के रूप में इन्हें स्थापित किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्मों जैसे मुझे इंसाफ चाहिए, प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर और प्यार का मंदिर में मुख्य भूमिका निभाई। मिथुन चक्रवर्ती ने वांटेड, बॉक्सर, जागीर, जाल, वतन के रखवाले, कमांडो, वक्त की आवाज, गुरु, मुजरिम और दुश्मन जैसी फिल्मों ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में पहचान दिलाई। साथियों, कलाकार कभी एक छवि में कैद नहीं होना चाहता, वो अपने प्रयास से अपनी अलग पहचान बना ही लेता है। ऐसे ही मिथुन जी ने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बनी, जो समाज की बुराई और भ्रष्टाचार से लड़ता है।

साथियों, मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रमुख हैं। वे अपनी मेहनत, संघर्ष, सरलता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। ये भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला और लगन के बल पर करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। साथियों, सफलता प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में अपना मनचाहा पद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, व्यक्तित्व तो एक ऐसी चीज है जो भीड़ में भी अलग दिखाई देती है। आपका व्यवहार ही तो आपकी पहचान बनती है। अपनी अनूठी अभिनय शैली, दमदार व्यक्तित्व और शानदार नृत्य कला से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक आज भी बरकरार है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके स्वस्थ सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।

0: साथी, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और आप साथ हैं अपनी रेडियो साथी नीतू दुबे के। नीतू दुबे के साथ तो बढ़ते रहिए हमारे इस रेडियो के सफर पर, और चलते हैं अपने अब अगले कार्यक्रम की ओर जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत। जी हाँ साथियों, जिसमें हम आपसे करेंगे बातें और कुछ विषयों पर और सुनवाएंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत, क्योंकि संगीत तो हमारे जीवन का हिस्सा है, सुख दुख का साथी है। तो साथियों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है पर्यावरण संतुलन से जैव विविधता आवश्यक विषय से। साथियों जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव, ये सब प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पता है साथियों, प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा होता है। यदि किसी एक प्रजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो इसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। जैव विविधता हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, भोजन, औषधियां तथा प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती हैं। वन, नदियां, पर्वत और वन्य जीव मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में

0: हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

साथियों, जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना चाहिए। ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। जैव विविधता प्रकृति का श्रृंगार है और इसका संरक्षण हम सबका कर्तव्य। साथियों, आज के दिन विश्व समुद्री कछुआ दिवस यानी 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समुद्री

कछुओं के संरक्षण को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व को समझना है। पता है समुद्री कछुए पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मौजूद हैं और समुद्री जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समुद्री कछुए समुद्र के पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समुद्री घास और जेलीफिश की संख्या को नियंत्रित करके समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं। साथियों, जीव छोटा हो या बड़ा, प्रकृति के संतुलन में सहायक होता है, लेकिन आज के बढ़ते प्रदूषण ने सबके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। अक्सर समुद्री कछुए समुद्र में पड़े प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। हम सबकी गलती से इनकी जान चली जाती है। यही कारण है कि समुद्रों और तटों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

साथियों, तो अभी हमने बात की जैव विविधता के बारे में और अब हम बात करते हैं विश्व प्रेषण दिवस की, जो 16

जून को मनाया जाता है। ये दिवस उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी नागरिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो विदेश में रहकर अपने परिवारों और अपने देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीय विश्व के अलग अलग देशों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और ज्ञान के बल पर विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। पता है वे केवल अपने कार्यक्षेत्र में ही सफलता प्राप्त नहीं कर रहे बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, हमारे भारत का मान बढ़ा रहे हैं। विदेशों में जो लोग काम करते हैं वो भारतीय अपने परिवारों को जो धनराशि भेजते हैं उसे प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। इस धनराशि से परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में ये काम आती है। साथियों, हमारे देश में परिवार का बहुत महत्व है। परिवार से ही तो हम समाज में जुड़ते हैं। साथियों, जो भारतीय देश से बाहर रहते हैं उन भारतीयों द्वारा भेजा गया धन देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है, साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। देश का आर्थिक विकास बहुत महत्व रखता है। भारत के कितने ही युवा विदेशों में जाकर नाम कमा रहे हैं और विदेशों में अर्जित ज्ञान, तकनीक और अनुभव का लाभ भारत को मिल रहा है। साथियों, जिससे नवाचार और विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। किसी देश की तरक्की बहुत मायने रखती है। अगर आपको अपने देश का नाम और मान बढ़ाना है तो ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश का नाम बढ़े, सम्मान के साथ लिया जा सके और आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकें।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR एप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम

0: कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियां। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोता, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।

0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
5: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।

0: 13, 12, 11. Oh,
1: Jonesy.
0: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू.
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
0: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9. ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं.
1: क्या कम हो गए हैं?
0: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू.
3: सू ने फिर से बाहर देखा. खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा. बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी. सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
0: 6, now it's 6, 5, 4, oh,
1: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है. खिड़की में तो कुछ नहीं है. तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी.
0: Only 4.
1: मेरी तरफ देखो
0: सू. Only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं.
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
0: 3 पत्तियां.
1: पत्तियां?
0: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ, हाँ.
0: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ. मुझे लगता है.
1: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉन्सी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू.
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है.
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू.
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं. ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू.
1: जॉन्सी.
3: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया. उसी दिन डॉक्टर भी आ गए. डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी.
2: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ. एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया. सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे.
3: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन. वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे.
2: वो चित्रकार थे. बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था. वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर.
3: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे. लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है. जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है.
2: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: 2. ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं.
3: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा. मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा.
3: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले

0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
1: हाँ,
3: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
3: वो

0: मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस। आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम का पहला तराना ये सुनते हैं गरम मसाला फिल्म से। स्वर सोनू निगम का है, मयूर पुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, गरम मसाला फिल्म का तराना भी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं एक गजनी फिल्म से ये तराना, जावेद अली के स्वर में। गीतकार प्रसून जोशी और संगीत दिया है जावेद ए आर रहमान ने।

श्रोताओ, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना ये सुनते हैं फना फिल्म से, सोनू निगम, सुनिधि चौहान और आमिर खान की आवाजों में। शब्द रचना प्रसून जोशी की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गदर फिल्म का ये तराना उदित नारायण के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

श्रोता, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अभी ही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के

0: में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के वजीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में नामानिगारों को बताया कि इस साल योगा डे की अहम तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड पर मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर 45 मिनट का योगा प्रोटोकॉल मुनक्किद किया जाएगा। दरियां असना बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर 21 जून तक चलने वाले योगा हफ्ते के तहत रियासत के तमाम अजला में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। योगा हफ्ता रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर समेत मुख्तलिफ अजला में शुरू हुआ, जिसमें अवामी नुमाइंदों, इंतजामी और पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और समाजी कारकुन प्रोटोकॉल के मुताबिक योगा कर रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर खिताब करते हुए आयुष के वजीर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में रियासत में योगा, आयुष और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2023 के तहत नई सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। 14 जून को वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका आगाज किया। गोरखपुर के जिला प्रोग्राम अफसर अभिनव मिश्रा ने बताया कि इस स्कीम के तहत 7 किस्म के मुस्तफिदीन को 10 किस्म की रेसिपी दस्तियाब कराई जाएंगी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में अतियात और कीमती अशिया के गबन के इल्जामात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई खसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने कल अपनी तहकीकात शुरू कर दी। SIT की क्यादत लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस और महकमा खजाना के खसूसी सेक्रेटरी नील रतन इसके मेंबर हैं। हमारे नामानिगार ने इतला दी कि SIT ने तमाम मेंबरान कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने कमिश्नर और अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के साथ मंदिर अहाते का दौरा किया। SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब पहले सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को ललित वत्स का नमस्कार। बहनों, आपसे हम कुछ बात करें, आपको कुछ सुनवाएं, उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।

बहनों, दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी मोबाइल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और बहनों, सच तो ये है कि आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आज हर व्यक्ति मोबाइल पर ही रिश्ते निभाता नजर आता है, चाहे तबीयत खराब हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, सुख दुख, हर व्यक्ति मोबाइल पर भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन आसानी से मोबाइल के जरिए उससे जुड़ सकते हैं। डिजिटल सुविधा का प्रभाव हमारे पारिवारिक रिश्तों पर भी दिखाई दे रहा है। बहनों, एक समय ये था जब परिवार के सदस्य साथ बैठकर बातचीत करते थे, अपनी सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा करते थे और एक दूसरे के लिए समय निकाला करते थे। आज कई घरों में ये देखा जाता है कि एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ बैठे तो हैं,

लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। बहनों परिवार के साथ भोजन करते समय, घूमने फिरने के दौरान या विशेष अवसरों पर मोबाइल से दूरी बनाकर एक दूसरे को समय देना चाहिए। बच्चों और बड़ों के बीच खुलकर बातचीत हो ताकि रिश्तों में अपनापन बना रहे। आजकल तो हर व्यक्ति व्यस्त है, ऐसे में वह घर बैठे ही शॉपिंग भी करना चाहता है और इससे व्यक्ति की समय की जो है बचत होती है यदि वो मोबाइल के द्वारा शॉपिंग करता है। इसमें बहुत अधिक विज्ञापन की भी आवश्यकता नहीं होती और छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और स्थानीय दुकानदार भी इसके माध्यम से अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके, वो देश विदेश तक पहुँचा सकते हैं। बहनों आजकल डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में इसकी मांग भी बहुत तेज़ हो रही है। युवाओं के लिए यह क्षेत्र जो है वो रोज़गार के नए अवसर लेकर आ रहा है। एक बात का ध्यान हमें बहुत आवश्यक है रखना कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसकी सच्चाई के विषय में अवश्य जान लें। वैसे सच कहा जाए तो आज हमारी आपसी बातचीत एक दूसरे के मोबाइल नंबर से शुरू होती है। हम बस हर समय मिलने वाले से यही पूछते हैं

హలో 9820262122 BPL. అరే 9820262 35 మ్యాక్స్ టచ్ చే.

0: अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
1: मैंने यदि हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो हमें उन्हें नियमित रूप से लगने वाले टीके अवश्य लगवाने चाहिए. मैंने बचपन में लगाए जाने वाले टीके बच्चों को पोलियो, खसरा, काली खांसी.
2: It's alright. It's alright. It's alright.

0: बहनों, अभी आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2017
3: फैसिलिटी
4: जी। आप चूंकि मेंटल हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आपके साथ दो चार होते हैं दैनिक तौर पे, और आपने इस समस्या को बड़े करीब से देखा होगा। आज के समय में युवाओं में नशे की जो प्रवृत्ति है, ड्रग्स लेने का जो चलन है, वो इतना बढ़ क्यों रहा है?
3: ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर हमें बात करनी चाहिए। हालांकि जो हमारा युवा है वो जागरूक नहीं है, नशे के प्रति जागरूकता नहीं है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे स्कूल्स में। तो अगर युवा जागरूक होगा, क्योंकि समाज में ड्रग्स अवेलेबल है हर जगह, आपको अल्कोहल शॉप दिख जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो क्रिएटिव माइंडसेट के साथ होता है, तो उसे हर नई नई चीजें ट्राई करनी होती हैं, और वहीं कहीं ना कहीं वो गलत चीजें भी ट्राई कर लेता है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सही गलत अपनी लाइफ में करता रहता है, और ऐसे ही वो आगे बढ़ता है, ऐसे ही वो चीजें सीखता है। और इसमें परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर परिवार एजुकेटेड होगा, अवेयर होगा,
4: तो
3: बच्चों
4: वो
3: अपने बच्चों को भी समझा सकता है, इजीली उनको हैंडल कर सकता है और नशे की गिरफ्त से बाहर कर सकता है।
4: आपने ठीक कहा कि जो एक अवेयरनेस का लेवल है वो बहुत निम्न स्तर का है, और वो मुख्य वजह है इस चीज की कि आजकल का युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में चला जा रहा है। लेकिन आपने जैसा कहा कि परिवार की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, तो एक परिवार को भी अवेयर होना इसके प्रति बनता है। तो परिवार कैसे ये जान पाए, क्या वो संकेत होते हैं जहाँ परिवार वालों को ये लगे, ये महसूस हो कि उनका बच्चा जो है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है?
3: सबसे पहले तो फैमिली को ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है।

0: बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना है। हम डांट कर, गुस्सा करके, ताने मार के बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। हम उसको प्यार से, उसका ट्रस्ट जीत कर ही उसको उसके फ्यूचर में आगे ले जा सकते हैं। तो एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना बच्चे के साथ, उसको समझना कि हर इंडिविजुअल के साथ अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और हर पर्सनालिटी अलग अलग है। हम एक ही तरह से हर बच्चे को, हर इंसान को ट्रीट नहीं कर सकते। हमें उसकी भावनाओं को समझना है, उसके व्यवहार पर हमें मार्गदर्शन देना है कि वो उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, बच्चा हमसे सारी बातें शेयर कर रहा है कि नहीं, क्या वो हमसे हिचकिचा तो नहीं रहा, कुछ छुपा तो नहीं रहा। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा घर से बाहर रह रहा है या बहुत ज्यादा इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, गुस्सा कर रहा है, हो सकता है उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो हमारे यहाँ टेलीमानस अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आगरा में। आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: आपने जैसे कहा कि बच्चा जो है अगर कोई नशे की गिरफ्त में है, उसकी गतिविधियां जो है वो थोड़ी दूसरे किस्म की हो जाती हैं, जहां पर वो
0: जी
1: चिड़चिड़ा भी हो सकता है, जहां पर वो रिएक्शंस भी दे सकता है अजीब तरह के। परिवार के लोगों को खास तौर पे इसकी जो है पहचान करनी रहेगी कि किस तरह से उसका बिहेवियर है। उसके बिहेवियर को बहुत सहज तरीके से, बहुत ही प्यार से आपको समझने की जरूरत होती है, जो भी परिवार के बड़े सदस्य हैं उनको। एक युवा को अगर मैं ये कहना चाहूं कि तनाव हुआ या अवसाद हुआ, क्योंकि बहुत सारे आजकल तनाव इस तरह के युवाओं में प्रेविलेंट हैं, चाहे वो उनके पढ़ाई लिखाई से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो उनके पर्सनल रिलेशंस हों, या उनके पीयर ग्रुप के कोई ऐसे कारण हों जिनकी वजह से बच्चों में तनाव या अवसाद होता है, तो क्या ये वजहें बनती हैं बच्चे को नशे की तरफ ले जाने के लिए?
0: जी बिल्कुल, ये कारण हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कभी हो सकता है कि बच्चा अपनी बातें खुलकर ना बता पाया हो, कुछ ब्रेकअप इश्यूज हो सकते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और वो चीज़ें बच्चे कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन का इतना भाव है कि बच्चा अपनी बात खुलकर नहीं बता पाता और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो अपनी बातें इजीली शेयर नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं
1: अपने
0: ये
1: आप कर
0: इजी,
1: मानसिक जो है वो एक भार महसूस करता
0: बिल्कुल
1: है,
0: वो उस
1: दबाव महसूस
0: तनाव से
1: करता है।
0: बचने के लिए गलत उपाय अपना लेता है।
1: तो ये जो गलत उपाय आप कह रहे हैं, उसमें वो सहारा ले सकता है किसी ड्रग्स
0: जी
1: का या शराब का या किसी और नशीले पदार्थ का। ये शराब हुआ, ड्रग्स हुआ या कोई और नशीला पदार्थ
0: जी
1: है, ये उसके मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह से क्या प्रभाव डालते हैं?
0: जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान ड्रग्स का यूज करेगा तो कहीं ना कहीं उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, एज वेल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होंगे। तो उसमें बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि हम बात करें मतिग्रस्त, जो कि बहुत आम है, हेल्यूसिनेशंस जिसको हम कहते हैं। अगर कोई इंसान लंबे समय से ड्रग्स ले रहा है या शराब ले रहा है तो वो ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो सकता है।
1: एक वजह ये भी होती है कि बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ एक शौकिया तौर पे भी
0: जी
1: कभी कभी ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो आगे चल के उनकी लत बन जाता है।
0: जी बिल्कुल, बच्चा पीयर प्रेशर में इंक्लूड होके कहीं ना कहीं कूल बनने के लिए या अपने दोस्तों में उठने बैठने लायक वो बन सके, जैसे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा है कि अगर गेट टुगेदर हो रहा है तो ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: तो अपने आप को
0: एल्कोहल्स का
1: आइसोलेटेड ना
0: इन्वायरमेंट।
1: फील करे वो,
0: एग्जैक्टली
1: ये
0: बिल्कुल
1: साबित करने
0: वो
1: के लिए सिर्फ कि वो भी उन्हीं की एक सोसाइटी का हिस्सा है और वो ऐसी चीजों का सेवन कर लेता है। नशे की लत जो है मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है सामान्य तौर पर, उसको किस तरह से प्रभावित करती है?
0: बेसिकली जो नशा है वो डोपामाइन रश करता है, यानी कि हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, खुशी का एहसास दिलाता है। पर हम इसको और भी चीजों से अचीव कर सकते हैं, इसके ऑल्टरनेट्स हम ढूंढ सकते हैं। जो डोपामाइन रश हमें ड्रग्स से हो रहा है वो हम नेचुरली फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि साइकिलिंग, जिमिंग, स्पोर्ट्स में इसे भी हम अपने मेंटल हेल्थ को हैप्पी रख सकते हैं, मैनेजेबल बना सकते हैं।
1: ये जो नशे की लत है या कुछ इस तरह का एडिक्शन है अगर किसी को, तो उसमें फिर उपाय क्या है, कैसे उसको छुड़ाया जाए, काउंसलिंग कितनी प्रभावी उसमें साबित होती है?
0: नशे का पहला कदम है कि हम परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर परिवार उसको अच्छे से समझेगा और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप है वो मेडिकेशन है,
1: बिल्कुल
0: हम मुफ्त दवाइयाँ दिला सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से। परामर्श बहुत जरूरी है क्योंकि परामर्श से लॉन्ग टर्म रिकवरी आती है, लंबे समय तक वह इंसान नशे से दूर रह

0: सकता है। अगर उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है तो हम साइकेट्रिस्ट से कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि नशे के दौरान मानसिक बीमारियां भी होती हैं।
1: जैसा कि आपने कहा था कि काउंसलिंग है, टेलीमानस की सुविधा है, वो भी
0: जी
1: आजकल मुहैया कराई जा रही है, जहां पर उनको वहां ना जाएं,
0: जी
1: सिर्फ फोन पर भी वो उसकी
0: जी
1: काउंसलिंग कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं। तो आपने जो टेलीमानस की सुविधा का जिक्र किया, वो भी बड़ी प्रभावी हो सकती है।
0: जी सर, टेलीमानस का मैं नंबर शेयर करना चाहूंगी, 144-16, दिस इज अ टोल फ्री नंबर। ये भारत सरकार की 24x7 निशुल्क और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है।
1: एक दफे नंबर फिर से रिपीट कर सकते हैं हम?
0: 144-16।
1: मैडम, जाते जाते मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, पुनर्वास केंद्र होते हैं, इनकी भी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं?
0: यहाँ पर हम पेशेंट को एडमिट करवा सकते हैं, पर हमें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि हमारे लिए कौन सा रिहाब बेस्ट है। अगर आप किसी भी रिहाब भेज रहे हैं तो वहाँ कनेक्ट रहिए, एक्टिव रहिए, सतर्क रहिए कि उसको टाइम पर मेडिसिन्स मिल रही हैं, टाइम पर खाना मिल रहा है,
1: उसके रेस्पॉन्सेज
0: प्रॉपर,
1: कैसे
0: हाँ,
1: प्रॉपर।
0: रिस्पॉन्सेज कैसे आ रहे हैं। फैमिली काउंसलिंग के लिए जाइए, किसी भी अच्छे नशा मुक्ति केंद्र में आप अपने बच्चे को, अपने रिलेटिव्स को एडमिट करवा सकते हैं।
1: और जो आपने जैसा कहा था कि अभिभावकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भूमिका,
0: जी
1: वो बहुत
0: बिल्कुल,
1: महत्वपूर्ण है।
0: जितना परेशानी एक पेशेंट उठाता है उतनी ही उसका परिवार भी उठाता है, क्योंकि परिवार उतना जागरूक नहीं है, उन्हें नहीं पता क्या बीमारी हुई है, कैसे इसे ठीक किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है। तो आपको धैर्य रखना है, अपना ध्यान रखना है, नशे से पीड़ित इंसान के साथ खुद को बीमार नहीं करना, आपको बीमारी से लड़ना है, खुद बीमार नहीं होना। तो अपनी काउंसलिंग लेते रहिए, अगेन मैं कहूंगी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में आइए और अपना परामर्श लीजिए।
1: निश्चित रूप से ये जो आज आपने नशा, जो आज का सामाजिक बीमारी है, उससे मुक्ति पाने के लिए जो आपने उपाय बताए हैं, निश्चित रूप से ये हमारे श्रोताओं के लिए, श्रोताओं को जागरूक करने के लिए और उनको सही दिशा प्रदान करने में मददगार साबित होंगे। आज नशा मुक्त भारत अभियान में अपना एक जो आपने योगदान दिया है हमारे श्रोताओं को, उसके लिए आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी को।
2: बहनों, किशोरों में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत विषय पर नेहा सिंह से बातचीत कर रहे थे अनिल सिंह जी। बहनों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है नीतू जी। नीतू जी, परिवार में, हमारे जीवन में बहुत बड़ी परिवार जो होती है वो ताकत होती है, और जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली जो है वो मोबाइल फोन और काम के बढ़ते दबाव के कारण बहुत सारे परिवार के लोगों के बीच में बातचीत बहुत कम होती है ना, आपने ये देखा ही होगा। और कई बार छोटी छोटी गलत फहमियाँ रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती हैं, है ना।
3: हाँ ललित, बिल्कुल ठीक कहा। पता है, ऐसे में जरूरत होती है थोड़ी सी समझदारी की। कभी माता पिता बच्चों से उनके दिन भर के अनुभव पूछें।
2: हाँ बिल्कुल ठीक कहा।
3: बच्चे अपने दादा दादी और माता पिता के साथ कुछ समय बिताएं। परिवार के सभी सदस्य दिन में कुछ समय तो साथ मिलकर बैठकर बातचीत करें।
2: बिल्कुल ठीक कहा नीतू तुमने, और इससे रिश्तों में आपसी समझ बढ़ती है और रिश्ते हमारे मजबूत भी होते हैं, है ना।
3: और पता है ललित, मुझे माफ कर दो या मुझसे गलती हुई है या मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, ये जैसे छोटे छोटे शब्द भी रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा। यदि गलतियां हर ही किसी से होती हैं, लेकिन यदि वो कह दे कि मुझे माफ कर दो या मुझसे गलती हुई, तो ये रिश्तों में मजबूती लाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने रिश्तों को संभालना आप ही की जिम्मेदारी है। अपने परिवार की भावनाओं की कद्र करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कोई यही कहेगा।

अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे मनहर उदास की गाई गजलें। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

श्रोताओं, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, गजल केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि दिल की आवाज है। इसमें भावनाओं की नजाकत, प्रेम की गहराई और जीवन के अनुभवों का सुंदर चित्रण मिलता है। यही कारण है कि गजल सदियों से श्रोताओं और साहित्य प्रेमियों के दिलों पर राज करती आ रही है। साथियों, गजल वो आईना है जिसमें इंसानी जज्बात अपनी पूरी खूबसूरती के साथ झलकते हैं। तो आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई एक और ये प्यारी सी गजल।

श्रोताओं, पंकज उदास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in the opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest. Message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल

0: होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है।

एनटीए ने कहा प्रतिबंधित परीक्षा टेलीग्राम पोस्ट करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित बातचीत में

0: निश्चित रूप से युवा संसद से जुड़े युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ आकार करने के
1: सरकार 145 संशोधन अधिसूचित किया।

0: गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर

0: दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण का राग मिश्र पहाड़ी में धुन।

श्रोता, इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:46 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत ये सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओ, चिराग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत रचना मजरू की थी और संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं, तीन देवियां फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं घर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। प्रस्तुत करता है अनिंद्र सिंह, साथ दे रही हैं विशेषता शर्मा।
1: हेलो मेरी पसंद। प्यारे साथियों, ये यादें भी बड़ी अजीब होती हैं। मन की दहलीज पर जब भी स्मृतियों का कोई झोंका आता है तो एक अनकही सी सिहरन जगा जाता है, और जब उन यादों को किसी प्रिय धन का साथ मिल जाए तो वो पल महज एक वक्त नहीं रहता बल्कि उम्र भर के लिए एक मुकम्मल एहसास बन जाता है ना? तो आइए इसी एहसास को फिर से जगाते हैं संवेदना और सुरों के इस सुंदर मोड़ पर। स्वागत है आपका हमारी और आपकी भावनाओं के इस साझा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। साथियों, ये कार्यक्रम एक खुला आमंत्रण है आपके भीतर छुपे उस एकांत को आवाज देने का जो रोजमर्रा के कोलाहल में कहीं थम सा जाता है। आज हम यहाँ सिर्फ गीत नहीं सुनेंगे बल्कि आपकी पसंदीदा धुनों के बहाने आपके जीवन के किसी अनछुए प्रसंग को टटोलेंगे। आपके कंठ से निकली एक फरमाइश आज न जाने कितने हृदयों में पुरानी स्मृतियों के बंद कपाट खोल देगी। तो आइए इसी दूरी को पाटते हैं। अपने भीतर के उस ठहराव को पहले जरा महसूस कीजिए, अपनी पसंद के उस एक खास नगमे को याद कीजिए और फिर क्या, सीधे हम तक पहुंचा दीजिए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी पुकार की। चलिए इस बेहद खूबसूरत और संगीतमय संवाद का आरंभ करते हैं और देखते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे श्रोता कौन से हैं। हेलो
2: जी, हेलो मेरी पसंद
1: जी। हेलो।

0: मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, मैं गंगानगर फुकवाहाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा बोला हूँ।
0: बनवारी लाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया
0: आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, कई बार आपसे बातचीत हुई है।
1: जी।
0: आकाशवाणी आगरा को आप नियमित तौर पर सुनते हैं?
1: जी, सभी कार्यक्रम जो है पसंद लगते हैं। हेलो, मेरी पसंद है महिलाओं का कार्यक्रम है, बाल जगत है, मजदूर मंडल है, युववाणी कार्यक्रम है, लगभग सभी कार्यक्रम बेहद पसंद लगते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा हमें। बनवारी लाल जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है क्रांति और गीत के बोल है जिंदगी सीना टूटे लग।
0: और कौन कौन सुनेगा आपके साथ इस गीत को?
1: हमारी मैडम है मंजुलता कुशवाहा और रवि आर्यन, हमारे बेटे हैं राम और श्याम और अन्य साथी।
0: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपने परिवार के सभी लोगों के साथ सुनिए, अपनी पसंद पर ये गीत।
1: थैंक यू।

0: ये गीत आप सुन रहे थे नरेंद्र जी की पसंद पर। अगले कॉलर हमारे लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं कहाँ से हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार। हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ मैम।
0: इमरान जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इमरान जी, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी आगरा के आप?
1: बिल्कुल मैम, मैं सुनता हूँ, और तभी मैंने आज ये फोन किया है। और बहुत अच्छा लगता है मैम आपके केंद्र से जो फोन इन प्रोग्राम आता है ये, और जिसकी रिकॉर्डिंग हर फ्राइडे के दिन होती है, बहुत पसंद आता है, परिवार के साथ सुनते हैं मैम।
0: जी, हमें बेहद अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमें इतना ध्यान से और इतना प्रेम से सुनते हैं। कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम, आपको पसंद आते हैं?
1: बिल्कुल मैम, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। अभी आपके यहाँ से जो युवाणी कार्यक्रम आता है, युवाओं के लिए काफी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ रहती हैं, रोजगार की बातें होती हैं, शिक्षा की बातें होती हैं, और समय समय पर जो वार्ताएं सुनाई जाती हैं वो भी बहुत पसंद आती हैं मैम।
0: जी इमरान जी, आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल मैम, ये जरूर बताना चाहूंगा, मैं सन 2007 से आकाशवाणी के अन्य केंद्र सुन रहा हूँ मैम, और जो आगरा से मैं अभी अभी लगभग 2 महीने पहले जुड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ के भी प्रोग्राम सुनने लगा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम मैं राज मूवी का गाना सुनना चाहूंगा, गाने के बोल हैं आपके प्यार में हम सबरने लगे।
0: ठीक है इमरान जी, इस गीत को आपके साथ और कौन कौन सुनेगा?
1: मैम मेरे भाई हैं जीशान वारसी और अयूब खान करोला मुरादाबाद से।
0: जी, आप सबके साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत, और अगली बार हमें फोन जरूर कीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे इमरान शेख की फरमाइश पर राज फिल्म का ये गीत। अगली कॉलर लाइन पे है, आइए सुनते हैं कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम चंदन है।
0: चंदन, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लाल कोठी के पास, जयपुर से।
0: चंदन जी, और क्या क्या शौक हैं आपके, क्या हॉबीज हैं आपकी?
1: मुझे लेखन पसंद है, जीवन के खट्टे मीठे पलों को अपने कल्पनाओं के सांचे में डालना और फिर उस दुनिया को अपने हाथों से सजाना, लेखन पसंद है।
0: अच्छा, तो क्या लिखते हैं आप?
1: ज्यादातर कहानियां लिखता हूँ, लघु कथाएं और कुछ कुछ कविताएं भी।
0: कविताएं भी लिखते हैं? तो कोई कविता अगर आपने लिखी है तो हमें सुनाइए, श्रोताओं से आप चाहें तो बांट सकते हैं।
1: रेत के टीलों पर तुम्हें पत्र लिखे थे, सोचा था ये बस मेरे और रेत के टीलों के बीच की बात है, लेकिन ये हवाएं उनको उड़ा कर ले गईं और दूर, बहुत दूर तुमको सब सुना बैठी। मैं तो रहा यहीं और जाता भी कहाँ, न तुम्हारा नाम पता था न तुम थे कहाँ। पता नहीं था कि ये हवाएं इतनी बदमाश होंगी, बिना बताए मुझे मेरी सारी बातें बतला देंगे। दूर वादियों से आकर हवाओं ने मुझे आगाह किया कि आ रही है वो जिसको तुमने सोचा किया। थी नहीं उम्मीद कि कभी तुमसे मिल भी पाऊंगा, देख कर तुम्हें सामने इतना खुश भी हो पाऊंगा। कहना है बहुत कुछ, क्या क्या न कह दूं, सपनों में कहीं बातें क्यों फिर से ना कह दूं। अगर ये सच है सपना जैसा तो इसे सपना ही रहने दो, इस हसीन सपने में मुझे जीवन भर जीने दो। रोक लो इस पल को, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुम मेरे सामने रहो, तुम्हारे सिवा अब और क्या चाहिए।
0: बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी कविता को सुनकर, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। तो आकाशवाणी आगरा को सुनते हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल सुनता हूँ।
0: कौन कौन से कार्यक्रम हमारे आपको पसंद आते हैं?
1: कार्यक्रम तो सारे ही अच्छे होते हैं, मगर कुछ बातें कुछ गीत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यही वो कार्यक्रम है जिसमें माइक के पीछे जो इंसान बैठा होता है वो थोड़ा फिल्टर हटा के बात करता है।
0: जी, बड़ा अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और कुछ बातें कुछ गीत आपको इतना पसंद आता है। हम कोशिश करेंगे आगे और भी इसे अच्छा कर सके।
1: जी
0: चंदन जी, आपको कविताएं लिखना तो पसंद ही है, क्या आपको गाने सुनना भी पसंद है?
1: जी जरूर पसंद है।
0: तो आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे अमर प्रेम फिल्म बहुत पसंद है, तो क्या आप रहना बीती जाए ये गाना सुना सकती है हम दोनों को?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप किसके साथ सुनना चाहते हैं इस गीत को?
1: जी मेरी पत्नी माया।
0: ठीक है चंदन जी, आप अपनी पत्नी के साथ सुनिए अमर प्रेम फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: चंदन की पसंद पर अभी आप सुन रहे थे अमर प्रेम फिल्म का गीत। अगला फोन हमें कहाँ से आया है आइए सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका परिचय?
1: जी मैम, मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर यूपी से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं वक्कार फरीदी साहब आप?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मेरी इस प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगी है।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें आशा है कि आगे भी आप फोन करते रहेंगे।
1: जी मैम बिल्कुल। मैम आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक जानकारी चाह रहा था कि आपके यहाँ से कोई पत्रों पर या व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल पर आधारित कोई फरमाइशी प्रोग्राम हो तो वो भी बताने की कृपा करें।
0: ईमेल पर या व्हाट्सएप पर तो अभी हमारे यहाँ फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पत्रों पर आधारित एक फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम चलता है रजनीगंधा, जो हर शुक्रवार को रात 10 बजे प्रसारित किया जाता है। तो उसमें आप अपने पत्र हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें जरूर शामिल करें।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, हर शुक्रवार को।
0: जी,
1: अच्छा,
0: आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे और इसका गीत है अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छा, गुनगुना लेते हैं आप।
1: जी मैम शुक्रिया।
0: अभी आप फिलहाल गीत को सुनते हुए गुनगुनाइए, लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

ये गीत आपने सुना वक्कार फरीदी की पसंद पर। साथियों, कितना खूबसूरत होता है ना ये एहसास कि हम सब अलग अलग जगहों पर हैं, अपने अपने कमरों में या तो अकेले बैठे हैं या अपने परिवार के साथ, लेकिन एक ही गीत ने हम सबको एक धागे में पिरो दिया। एक गीत जो हमारे मन में अनगिनत यादें जगा देता है। पर वक्त की जिद के आगे किसकी चली है जनाब, वक्त के आगे तो हम सब हार जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त आ गया है, इस वादे के साथ कि यादों का ये सिलसिला कभी धुंधला नहीं पड़ेगा और यूं ही चलता रहेगा। अगर

0: आज आप अपनी पसंद हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो उदास मत होइए। अगली बार के लिए इस नंबर को अपनी डायरी में जगह दे दीजिए ताकि आप अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकें। चलिए चलिए अब देर मत कीजिए, कलम उठाइए और नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0562-350-1852 यानी 0562-350-1852। हमारा दूसरा नंबर है 0562-297-0337 यानी 0562-297-0337। तो अगली बार हमें फोन करना भूलिएगा नहीं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से। चलते चलते बस इतना ही कि रास्ते में अगर कोई अच्छा गाना मिल जाए तो ठहर कर उसे सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी गानों से ही तो मुकम्मल होती है। और अब मुझे यानी रेडियो की विशेषता को दीजिए इजाज़त, और आप, जी हाँ आप ही, अपना बहुत बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। संवादक थी विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। हमारे इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अभी यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम फेम 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेनदेन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा।

0: पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पीटर वेव 196.1 मीटर 33,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। सभा के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं कि आज की सभा में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं।

5:30 ये वक्त होता है कार्यक्रम युवाणी का, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे सैयद अरिशा जैदी की गाई चंद गजलें।

शाम 6 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम्य लोक। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे खेती में जैव उर्वरकों के प्रयोग से लाभ विषय पर आभा पाठक की वार्ता।

मजदूर मंडल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे बनवारी लाल की वार्ता, युवाओं के लिए सुनहरे अवसर, अग्निपथ योजना। इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। श्रोताओं, 7:10 का वक्त होता है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज सुनिएगा डॉक्टर रविकांत की वार्ता, पारिवारिक धन प्रेषण और अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका।

पार्टी मेरा देश। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 7:31। देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती ये सुन सकेंगे आप रात्रि 8:00 और 8:30 से 8:45 पर सुनेगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम। तो श्रोताओं ये थी एक झलक हमारी आज की सभा में आने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, सुर संध्या कार्यक्रम लेकर हम कुछ ही क्षणों में उपस्थित होते हैं।

0: 14 अक्टूबर फिल्म में आप सुन रहे थे जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में प्रसून जोशी का लिखा गीत, संगीत था A.R. रहमान का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

योद्धा अकबर फिल्म में आप सुन रहे थे ए आर रहमान की आवाज़ में ये गीत। आइए अब सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अदनान।

इमरान अजीज की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान का ये गीत। इसी गीत के साथ सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा और हम स्वागत करते हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का कार्यक्रम युवावाणी में। साथियों, आपके साथ आज जुड़ चुकी है आपकी अपनी रेडियो साथी राशि। हम उम्मीद करते हैं आप सभी फिट होंगे और इस वीक की शुरुआत आपने एक नए जोश के साथ की होगी। आखिर हमारा ये जोश ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, इस जोश को दिल में लिए चलिए आज का सफर तय करते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे गौरवशाली इतिहास का, और फिर बात करेंगे नशे की लत के गंभीर मुद्दे पर। साथियों, आज की चर्चा में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे अब आप अपने पर्स को कहेंगे बाय और करेंसी के डिजिटल अवतार को कहेंगे हाय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, जिसे भारत में ई रुपया भी कहा जाता है। ये हमारे पारंपरिक कागजी नोटों और सिक्कों का एक डिजिटल रूप है। ये आपके पर्स में रखे नोटों का ही डिजिटल अवतार है जिसे RBI ही जारी करता है। साथियों, आप जानते ही हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार लेकर आ रही है डिजिटल करेंसी। हम टेक सेवी युवाओं के लिए इसे समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने कैश से UPI तक का सफर तय कर लिया है, अब अगला बड़ा बदलाव CBDC है। UPI में आपका पैसा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर होता है, जिसमें कमर्शियल बैंक शामिल होते हैं। लेकिन ई रुपया सीधे आपके डिजिटल वॉलेट में रहता है, यानी लेन देन के लिए आपको किसी बैंक अकाउंट की मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी। साथियों, CBDC की एक खूबी ये भी है कि इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सरकार युवाओं को किसी खास स्कॉलरशिप या ट्रेनिंग के लिए पैसे देना चाहती है तो वो ऐसा डिजिटल रुपया जारी कर सकती है जो सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सके। अक्सर लोग इसे बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन साथियों, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में धोखाधड़ी और भारी उतार चढ़ाव का जोखिम हमेशा बना रहता है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल रुपया पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित है। साथ ही यह आपको कैश जैसी गोपनीयता भी देता है, जो हम प्राइवेसी कॉन्शियस युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, ये ई रुपया आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसों पर निर्भर नहीं है, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप अपनी जेब में कैश रखते हैं। बस फर्क इतना है कि ये आपके फोन के एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में रहता है। साथियों, हर नई तकनीक कुछ चैलेंजेस भी लाती है। भारत में लोग पहले से ही UPI के इतने आदि हो चुके हैं कि अब एक नए डिजिटल वॉलेट की तरफ शिफ्ट करने के लिए सभी को प्रेरित करना और इसके फायदे समझना एक काफी बड़ा टास्क है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सुविधा पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसे सुरक्षित और फुल प्रूफ बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर लेंगे। साथियों, अगर आप ई रुपया इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों के प्रति आपको बेहद सतर्क रहना होगा। जैसे जब कोई नई तकनीक आती है तो स्कैमर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ई रुपया एक्टिवेट करने या कैशबैक पाने

के नाम पर आने वाले फर्जी लिंक्स, एप्स या कॉल से बचें। ई रुपया वॉलेट हमेशा अपने अधिकृत बैंक के ऑफिशियल ऐप से ही डाउनलोड करें। ध्यान रखें कि ई रुपया बिटकॉइन की तरह नहीं है जिसकी कीमत बढ़ेगी और आपको मुनाफा होगा। ये सिर्फ नोट का डिजिटल स्वरूप है, मतलब बैंक अकाउंट में रखे पैसे पर आपको ब्याज मिलता है, लेकिन ई रुपया डिजिटल कैश है। जैसे जेब में रखे नोट पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वैसे ही इस वॉलेट में रखे पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। यानी आपके पास अगर 100 रुपए डिजिटल कैश में हैं, तो इसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी। साथियों, CBDC देश को कैशलेस और आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी की नींव है, लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर हमारी डिजिटल सतर्कता ही हमें सुरक्षित रखेगी। तो आप भी स्मार्ट सिटीजन बनने की ओर एक कदम बढ़ाएं, ई रुपए का इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ। साथियों, बात पैसों से जुड़ी हो ही रही है, तो आपसे एक सवाल भी पूछ लेते हैं। आपको पता ही है कि इंडियन करेंसी के हर नोट के पीछे भारत की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाने वाले प्रसिद्ध स्थलों या प्रतीकों की तस्वीरें छपी होती हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 200 रुपए के नए नोट के पीछे जो खूबसूरत कलाकृति बनी है, उसका नाम क्या है? आप सोचिए सवाल का जवाब और साथ ही आनंद लीजिए इस गीत का।

0: साथियों, अभी हमने आपसे पूछा था कि 200 रुपए के नए नोट के पीछे जो खूबसूरत कलाकृति बनी है उसका नाम क्या है। साथियों, उस प्रसिद्ध स्थल का नाम है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक शांत पहाड़ी पर स्थित सांची का महान स्तूप सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि ये भारत के सबसे पुराने पत्थर के ढांचों में से एक है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं तो सांची स्तूप आपकी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। आइए जानते हैं इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें जो आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देंगी। साथियों, इस स्तूप की नींव 3rd सेंचुरी में महान सम्राट अशोक ने रखी थी। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के बाद जब सम्राट अशोक का दिल भर आया तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के प्रसार के लिए इस स्तूप का निर्माण कराया। सांची स्तूप की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके शुरुआती निर्माण में आपको कहीं भी भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उस दौर में भगवान बुद्ध को सिंबल्स के जरिए दिखाया जाता था। स्तूप के चारों तरफ बड़े प्रवेश द्वार बने हैं जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता है। इन तोरण द्वारों पर की गई नक्काशी काफी बारीक है और इन पत्थरों पर जातक कथाएं और सम्राट अशोक के जीवन की घटनाओं को खूबसूरती से उकेरा गया है। 14वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने से सांची के स्तूप धीरे धीरे घने जंगलों और अनजानी पहाड़ियों के बीच खो गए। करीब 600 साल बाद साल 1818 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल टेलर ने इन्हें दोबारा खोजा। साथियों, सांची स्तूप जाने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से फरवरी के बीच, जब मौसम सुहाना और ठंडा होता है। आप सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक सांची स्तूप घूम सकते हैं। सूर्यास्त के समय स्तूप का नजारा बेहद अद्भुत होता है। साथियों, सांची जाएं तो वहां का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखना बिल्कुल ना भूलें, जहां मौर्य और गुप्त काल की प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक चीजें भी रखी गई हैं। तो अगली बार जब आप मध्य प्रदेश घूमने का प्लान बनाएं तो इस शांत और रूहानी जगह को करीब से महसूस करने सांची जरूर जाएं। साथियों, घूमने फिरने का शौकीन युवा दिल हमेशा से कविताओं, गीतों और गजलों के करीब रहा है। आज हमारे साथ हैं देश की उभरती हुई युवा आवाज कवियत्री सैयद अरीशा जैदी। आइए सुनते हैं उनकी सुरीली और एहसासों से भरी ये प्रस्तुति।
1: हुस्न की चर्चा चार सू की है, हुस्न की चर्चा चार सू की है, आगरा तेरे ताज पर गुफ्तगू की है। हुस्न की चर्चा चार सू की है, आगरा तेरे ताज पर गुफ्तगू की है। कर रही है अरीशा सलाम सबको, कर रही है अरीशा सलाम सबको, किनारे यमुना के हमने वजू की है। आप सबकी खिदमत में अपना कलाम पे

अभी की गजल दर्द और तन्हाई के एहसास से रूबरू कराती थी। अब उसी दर्द से उभरने वाले हौसले और इस्तकामत पे बात करते हैं। औरत की हिम्मत, सब्र और अज़्म के नाम मंसूब ये गजल पेश खिदमत है। सदियों से जल रही हूँ फिर भी जिंदा औरत हूँ, सदियों से जल रही हूँ फिर भी जिंदा औरत हूँ, हर दर्द को पीकर भी हंसती रही औरत हूँ, हर दर्द को पीकर भी हंसती रही औरत।

0: रथ हूँ। आंधियाँ आए तूफा बरसे रुकूंगी नहीं, आंधियाँ आए तूफा बरसे रुकूंगी नहीं, सपनों को सच करने निकली हुई औरत हूँ। रिश्तों की आग में खुद को जलाया हर रोज, रिश्तों की आग में खुद को जलाया हर रोज, फिर भी ममता लुटाती रही मैं औरत हूँ। कभी देवी कभी मजलूम बना डाला मुझे, कभी देवी कभी मजलूम बना डाला मुझे, हर नाम में सिमटी हुई एक दास्तां औरत हूँ। कभी इनकलाब कभी ममता का दरिया बनी, कभी इनकलाब कभी ममता का दरिया बनी, हर रंग में ढल जाऊं मैं वो हिम्मत औरत हूँ। मुझे कमजोर मत समझ मैं वजूद की लौ हूँ, मुझे कमजोर मत समझ मैं वजूद की लौ हूँ, जो राख से उठे वो धधकती आग औरत हूँ, वो धधकती आग औरत हूँ।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे सैयद अरीशा जैदी की सुरीली आवाज में ये गजल। कार्यक्रम में अब आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
2: जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, गीत संगीत गजलों और कविताओं का नशा तो दिल दिमाग के लिए अच्छा है, लेकिन आज इसी समाज के अंदर युवा वर्ग को खोखला कर रहा है सिगरेट शराब और ड्रग्स का नशा। साथियों, कहने को तो नशा एक शौक से शुरू होता है, लेकिन बहुत जल्द ये एक ऐसी खौफनाक जंजीर बन जाता है जिससे इंसान चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। शुरुआत अक्सर बहुत मामूली होती है, बस एक कश, सिर्फ एक पैग, दोस्तों का दबाव या कूल दिखने की चाहत, लेकिन सिगरेट या शराब की लत धीरे धीरे इंसान के दिल दिमाग पर कब्जा करने लगती है। जब नशा लत में बदलता है तो इंसान झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है और अपनों का जीवन दुश्वार करने लगता है। नशे को लोग सिर्फ सेहत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका विनाश चौतरफा होता है। लिवर का सड़ना, फेफड़ों का कैंसर, दिल का दौरा और दिमागी संतुलन खो देना, ये नशे के कुछ घातक पहलू हैं। इसके अलावा जो पैसा बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन या माँ बाप की दवाई में लगना चाहिए था, वो नशे की लत में चला जाता है। जब नशे की खुराक के लिए पैसे नहीं मिलते तो युवा हत्या जैसे जघन्य अपराध के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। साथियों, नशे के खिलाफ जंग सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है, ये जंग हर उस इंसान की है जो अपने समाज और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहता है। हमें आज और इसी वक्त कुछ नशे की लत को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसे कदम उठाने होंगे, जैसे अगर कोई तनाव में है तो उसका सहारा बने, ना कि उसे नशे की तरफ ढकेलने वाले लोगों के भरोसे छोड़ दें। पीयर प्रेशर में आकर कभी भी नशा ना करें। याद रखें, मना करना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। अगर कोई लत का शिकार हो चुका है तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाकर डॉक्टर की मदद लें, आखिर ये शर्म की नहीं जिंदगी बचाने की बात है। साथियों, नशे की हर बोतल पर, हर पैकेट पर साफ साफ लिखा होता है कि ये जानलेवा है, फिर भी हम आंखें मूंद कर मौत के कुएं में कूद जाते हैं। याद रखिए साथियों, अगर आपके हाथ में नशे का सामान है तो वो सिर्फ एक लत नहीं है बल्कि आपकी बर्बादी का सामान है, जो आपके कल को और आपके अपनों की खुशियों को धीरे धीरे राख कर देगा। साथियों, जिंदगी से बढ़कर कोई नशा नहीं होता, इसलिए नशे की जानलेवा लत से बचाव रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ आनंद लें कार्यक्रम के अगले गीत का।

साथियों, समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का। आपसे फिर जल्दी करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।

कार्यक्रम ग्रामीलोक की चौपाल में बैठे हमारे प्रोग्राम को सुन रहे सभी भाई बहनों को लोकेंद्र पाठक की राम राम। साथियों, आजकल मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है, कभी तेज धूप तो कभी गर्मी पड़ रही है, तो कभी अचानक आंधी और हल्की बारिश किसानों की चिंता बढ़ा देती है। अभी खरीफ फसलों की तैयारी का समय चल रहा है, इसलिए किसान भाई खेतों की जुताई, मेड़ों की मरम्मत और बीजों की व्यवस्था में जुटे हुए हैं।

ऐसे में मौसम की सही जानकारी लेकर ही कृषि कार्य करना लाभदायक रहेगा। मित्रों, मौसम भले ही हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन प्रकृति में कुछ जीव ऐसे हैं जो लंबे समय तक हमारा साथ देते आए हैं, जैसे कछुए। साथियों, समुद्री कछुए पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले भी धरती पर मौजूद थे। यही कारण है कि कछुए हमें प्रकृति के संरक्षण और जीवन में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। आज हम विश्व समुद्री कछुआ दिवस मना रहे हैं। वैसे मित्रों, जैसे कछुआ कैसे भी मौसम में अपना जीवन जी लेता है, कुछ वैसे ही हम किसान भी कैसे भी मौसम में अपनी खेती कर ही लेते हैं। लेकिन हम दोनों में, यानी कछुए और किसान में, एक अंतर है। कछुआ अपनी पीठ पर लगे अपने कवच के सहारे सुरक्षित रहता है, जबकि किसान को अपनी फसल के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हमें हमारी फसल की सुरक्षा एक योजना की सहायता से मिल रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। साथियों, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी तेज आंधी और कभी बेमौसम बारिश, किसान का जीवन हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए आज गांव की चौपाल में बैठते ही सबसे पहले मौसम की ही चर्चा शुरू होती है। कोई कहता है कि इस बार भैया गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो कोई कहता है कि बारिश का भरोसा ही नहीं रहा। बात तो सभी की सही है। मित्रों, हमारे आगरा और आसपास के क्षेत्रों में भी किसान मौसम की बदलती चाल को लेकर हमेशा ही चिंतित दिखाई देंगे। फसल तैयार होने तक किसान की नजर कभी खेत पर होती है तो कभी आसमान पर। किसान बीज खरीदता है, खेत तैयार करता है, खाद डालता है और महीनों मेहनत करता है। लेकिन यदि अंतिम समय में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी मेहनत को बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसी जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में किसानों को कुछ आर्थिक सहारा मिल जाए। साथियों, फसल बीमा को आप एक प्रकार की सुरक्षा कवच के रूप में समझ सकते हैं। जैसे हम अपने घर या वाहन की सुरक्षा के लिए बीमा करवाते हैं ना, वैसे ही फसल के लिए भी बीमा कराया जा सकता है। यदि सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए या तेज आंधी से फसल गिर जाए या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक कोई आपदा हो, उससे नुकसान हो जाए हमारी फसल को, तो निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता सरकार देती है। साथियों, आज के समय में मौसम कितनी तेजी से बदल जाता है। कभी जून में तेज लू चलती है तो कभी अचानक बादल आकर बारिश कर देते हैं। ऐसे में खेती पहले की तुलना में अधिक जोखिम भरी हो गई है। और यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। फसल बीमा योजना इसी दिशा में हमारी सहायता करती है। अच्छा, गांव के बिरजू चाचा कल कह रहे थे कि खेती में हम मेहनत ही तो कर सकते हैं भैया, लेकिन क्या मौसम भी हमारे हाथ में है? है ना, सही बात बोली ना उन्होंने। उनकी ये बात बिल्कुल सही है किसानों, कि किसान जो हमारे हैं वो खेती में मेहनत कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसान का काम खेत की तैयारी करना है, बुआई सिंचाई करना है, देखभाल करना है, लेकिन बारिश कब होगी, आंधी कब आएगी, ये कोई नहीं जानता। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य ही यही है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान पूरी तरह से अकेला अनुभव ना करे। इस योजना में अलग अलग खरीफ और रबी फसलों को शामिल किया गया है। समय समय पर राज्य और जनपद के अनुसार फसलों की सूची निर्धारित की जाती है। इसलिए किसानों को अपने क्षेत्र के कृषि विभाग, बैंक या संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते रहना चाहिए। मित्रों, आज मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है भाई। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कई जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

युवा किसान इन साधनों का उपयोग करके नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, फसल बीमा का लाभ तभी मिल सकता है जब किसान समय पर आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर ले। इसकी अंतिम तिथि का भी हमें ध्यान देना होगा। मित्रों, खेत में बोया गया बीज केवल फसल नहीं होती है, वे किसान की आशा, मेहनत और भविष्य का प्रतीक होती है। उसकी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है, इसलिए आप भी अपनी खेती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज ही अपनाएं। साथियों, हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। आइए हम सब सुनते हैं मनोरमा तिवारी के सुरों में इस लोकगीत को।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: साथ ही लोकगीत से पहले हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हम अपनी फसल को सुरक्षा दे सकें। लेकिन फसल होती तो खेत की मिट्टी में ही है ना, इसलिए सबसे पहले हमें खेत की मिट्टी को मजबूत करना चाहिए, जिससे हमें अच्छी फसल मिले। और इसके लिए हमें खेत में जैव उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति सही करनी होगी। आइए आभा पाठक से ये जानते हैं कि खेती में जैव उर्वरकों के प्रयोग से क्या क्या लाभ हैं।
3: किसान भाइयों को जैव उर्वरक शब्द से अवगत कराना चाहती हूँ कि जैव उर्वरक लाभकारी जीवाणुओं का ऐसा जीवंत मिश्रण है जिसका बीज जड़ों या मिट्टी में प्रयोग करने पर पौधे को अधिक मात्रा में तत्व मिल सकें, और साथ ही साथ मिट्टी की जीवाणु क्रियाशीलता एवं सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। लेकिन प्रश्न यह है कि जैविक खाद का प्रयोग आवश्यक क्यों है? हरित क्रांति के पश्चात आधुनिक खेती अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक के डालने पर निर्भर करती है। रासायनिक खादों का उत्पादन दिन ब दिन महंगा एवं कम होता जा रहा है। इसका अधिक प्रयोग वातावरण व भूजल को दूषित करता है। हालांकि शुरुआती परिणाम फसल उत्पादन को बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता को भी क्षीण करते हैं।

कुछ रासायनिक उर्वरक इस प्रकार हैं, जैसे कि अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और अमोनियम क्लोराइड आदि। किसान भाइयों से मेरा कहना है कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लालच में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करें। मिट्टी की जांच किए बिना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना उचित नहीं है और रासायनिक उर्वरक मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं। किसान भाई बिना जाने ही किस पोषक तत्व की मिट्टी में कमी है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना इतनी बिगड़ चुकी है जिससे कि उसकी भरपाई केवल जैव उर्वरक का प्रयोग करने से हो सकती है। जैव उर्वरक मिट्टी की संरचना को दोबारा प्राप्त करने में मदद करते हैं और उपज को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे दोनों समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक तो मिट्टी की संरचना में सुधार और दूसरा उपज। मिट्टी की संरचना सही मायने में अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों का मिश्रण है जिसमें कि सूक्ष्म जीव रहते हैं। हर जगह की मिट्टी दूसरी जगह की मिट्टी से अलग होती है और अलग होते हुए भी सारी मिट्टियों में कुछ तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि मूल चट्टान पर हवा, पानी और तापमान के असर के द्वारा तैयार होते हैं। दूसरी ओर मृत पौधों और प्राणियों के सड़ने से कई कार्बनिक पदार्थ भी बनते हैं जो कि मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के प्राणी जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और केंचुए भी रहते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में जो हवा और पानी भी मौजूद रहता है। भारत में अगर मिट्टी की बात करें तो कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, लाल और लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और रेगिस्तान की मिट्टी। मिट्टी का परीक्षण समय समय करवाते रहना चाहिए जिससे खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाया जा सके और उसके अनुसार जैव उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। मिट्टी के निर्माण में कुछ कारकों का योगदान है, जैसे कि जलवायु, किसी स्थान का तापमान और जल और अन्य पर्यावरणीय शक्तियाँ वहाँ की मूल चट्टान को तोड़ती हैं और मिट्टी की निर्माण गति को भी प्रभावित करती हैं। कुछ जैविक गतिविधि जैसे कि सूक्ष्म जीव व अन्य जीवित प्राणी अपनी भौतिक, रासायनिक, जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल चट्टान को तोड़ते हैं और इसके दौरान कुछ रासायनिक पदार्थ भी बनते हैं। सूक्ष्म जीवाणु मृत पौधों और प्राणियों को सड़ाकर कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं जो कि मिट्टी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। कुछ जैव उर्वरक इस प्रकार हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एनावीना, नोस्टॉक और एजोस्पिरिलम। फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक भी होते हैं जो कि आरबस्कुलर, माइकोराइजा इत्यादि। ये जीवाणु वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन की 78% को प्रवृत्त कर पौधे के उपयोग बनाते हैं, साथ ही साथ पौधे हेतु वृद्धि हार्मोन बनाते हैं। फास्फोरस की प्राप्ति के लिए यह जीवाणु मिट्टी में बंधी न मिलने वाली फास्फोरस को पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि वेसिलस, सुडोमोनास, एस्परजिलस। कुछ जैव उर्वरक की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एसिटोबैक्टर जैव उर्वरक जो कि एसिटोबैक्टर डाई एजोट्रोफिकस से बना है। इसके प्रयोग से सामान्य फसल उत्पादन में 5 से 20 टन प्रति हेक्टेयर तक वृद्धि हो सकती है। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक जो कि एजोटोबैक्टर कोकोकम से बनी है और यह जीवाणु मिट्टी में कहीं भी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य नाइट्रोजन परिवर्धन और वृद्धि हार्मोन बनाना है जिससे जड़ों की वृद्धि होती है। यह उर्वरक कीटाणुनाशक पदार्थ छोड़ता है जिससे कि जड़ों की बीमारियों से रक्षा होती है। यह पौधे की वृद्धि और उत्पादकता में 25% तक वृद्धि करता है। कुछ जैव उर्वरक फास्फोरस घुलनशील होते हैं, जैसे कि वेसिलस और सुडोमोनास। ये जीवाणु पौधे की जड़ों के पास रहकर घुलनशील फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं। जैव उर्वरक के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि जैव उर्वरक को ठंडी एवं सूखी जगह पर रखें और सूर्य किरणों एवं गर्मी से बचाएं। दूसरा ये कि जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग एक साथ न करें और जैव उर्वरक को उसकी अंतिम तिथि से पहले उपयोग में लाएं। किसान जैव उर्वरक के प्रयोग से खेती में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फसल उत्पादन को 10 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है, पौधों की वृद्धि में भी सहायक है और मिट्टी की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और पौधों को कीटाणुओं के प्रकोप से भी बचाता है। किसान भाइयों, आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग धीरे धीरे कम करें और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के बाद ही करिए, जिससे आपकी मिट्टी में जिस तत्व की कमी है उसकी

0: पूर्ति के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा सके और जैव उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। इससे आपका फालतू पैसा रासायनिक खाद के प्रयोग से बचेगा और आपको उत्पादन भी जैविक खाद के प्रयोग से अधिक प्राप्त होगा।
1: मित्रों, अभी हमने आभा पाठक से जाना कि खेती में जैव उर्वरकों के प्रयोग से क्या लाभ है। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, जानते हैं इस पखवाड़े के कारण इस समय आगरा और आसपास के क्षेत्रों में खरीफ फसलों की तैयारी का कार्य चल रहा है। किसान भाई बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द और चारे की फसलों के लिए खेतों की जुताई और समतलीकरण कर रहे हैं। बरसात से पहले बहुत से काम किए जाते हैं, जैसे मेड़ों की मरम्मत, नालियों की सफाई और वर्षा जल संरक्षण की तैयारी इत्यादि। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे हरी सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, तोरई और खीरा आदि की बुआई और देखभाल में भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही किसान बीज, खाद और कृषि यंत्रों की व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्योंकि भैया अब समय आ गया पूरी तरह से खेती में जुट जाने का, जिससे कि मानसून की पहली अच्छी बारिश मिलते ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू की जा सके। आइए इसी के साथ जान लेते हैं मौसम का हाल, क्योंकि हम किसानों के लिए मौसम की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में अनेक स्थानों पर बादल भी छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मित्रों, खेत में उगाई गई फसल का मंडी में क्या भाव चल रहा है, ये जानना भी हम किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जहां सब्जियों के भाव में टमाटर 1600 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 600 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल, लहसुन 4000 से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल और आलू का भाव है 500 से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल। तो मित्रों, हमारी चौपाल की बातें तो चलती रहेंगी, आइए अब सुरों की चौपाल सजाते हैं। सुनते हैं सीता गर्ग के मधुर आवाज में ये लोकगीत।

0: कार्यक्रम में लोग ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम जिसका नाम है मजदूर मंडल।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है, आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, खुश हैं अपने परिवार के साथ? भाई, इस महीने में बच्चों की चहल पहल से घर का माहौल ही बदला हुआ रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां, मतलब नानी मामा के घर का चक्कर तो लगना ही है। और दूर रहने के कारण नानी के परिवार में भी सबको बिटिया का, बच्चों का इंतज़ार रहता है। लेकिन साथियों, काम काज के चलते दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को याद करके ही शांत रहना पड़ता है, हमारे अपने मन महसूस कर रह जाते हैं। आज के समय में

बेटियों का ही नहीं, बेटे बहू और उनके परिवार का भी माँ बाप राह देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। कारण वही है, पैसा। दो वक्त की रोटी कमाना ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि आजकल सभी को देखा देखी सुविधाएं भी चाहिए, जिसकी बड़ी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो दूसरे देशों में जाकर नौकरी करते हैं, काम काज करते हैं और अपने परिवार को पैसा बेचते हैं। या कुछ लोग तो अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए भी बाहर के देशों में जाकर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन साथियों, घर परिवार से दूर उन्हें अच्छा नहीं लगता, भाई मजबूरी है इसीलिए रहना पड़ता है, वरना अपने परिवार जैसा प्यार कहाँ मिल सकता है। सच में अपनों से दूरी बहुत खलती होगी ऐसे लोगों को। साथियों, ऐसे ही लोगों के त्याग और मेहनत को ध्यान में रखते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। आखिर हर देश के लोग ही अपने देश को याद करते हैं, अपने गांव, गली, मोहल्ले को याद करते हैं, लेकिन काम तो काम है, इसीलिए जाना पड़ता है। लेकिन साथियों, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बहनों को कितना अधूरापन लगता है, चाहे कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, पैसा मिल जाए, पर अपनों के बिना सारे व्रत त्यौहार सब उत्सव फीके लगते हैं, क्योंकि परिवार ही मानव जीवन की सबसे खास इकाई है। यूं समझिए कि ये हर व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है, जिसमें शिक्षक होते हैं परिवार के सदस्य। साथियों, अपने परिवार से कोई अलग नहीं होना चाहता, कारण अनेक हैं दूर होने के, लेकिन एक कारण है सपने। जी हाँ, वो सपने जिससे खुद ही अपनी पहचान बनती है। कुछ भी हो, लेकिन प्रेषण से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से हमारे देश को बहुत लाभ भी होता है, और कुछ स्थितियों में ये विकास का रास्ता भी है। लेकिन जैसा कि कोविड के समय हुआ, बहुत सारे भारतीयों को वापस भेज दिया गया, जो लोग दूसरे देशों में तिनका तिनका जोड़कर अपना घरौंदा बना चुके थे, सब छोड़कर अपने देश को लौट आए। तब प्रवासी लोगों को ये महसूस हुआ था कि अपना देश तो अपना ही होता है, हर स्थिति में वो अपने देशवासियों की सुरक्षा करता है। लेकिन साथियों, कभी कभी जब एक देश के हालात ठीक नहीं होते, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय, युद्ध के समय, सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे देश में पलायन करना ही जान बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। एक बात और है कि अलग अलग देशों में रहने के कारण एक देश की स्थितियों का दूसरे देश पर इतना असर नहीं हो पाता, वहाँ रहने वाले भी परेशानी में पड़ जाएं तो वहाँ रह रहे लोग अपने देशवासियों की आर्थिक और भावनात्मक मदद कैसे करेंगे। वैसे परिवार के महत्व को बताने के लिए एक और भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कहते हैं। अब बताइए ज़रा कि ये दिवस कब मनाया जाता है भला? इसका उत्तर हम कार्यक्रम में आगे देंगे, लेकिन पहले आप अपनों के दर्द को समेटे हुए इस गीत को सुनिए।

साथियों, कितना दर्द है इस गीत में। दोनों तरफ के लोग ही जैसे तड़प रहे हों, लेकिन कभी कभी युवा बुजुर्ग माता पिता के दर्द को, परेशानी को, भावों को नहीं समझते और अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं। पर माता पिता बेशक बच्चों की तरक्की

0: चाहते हैं पर उनसे प्यार कम नहीं कर पाते, उनकी याद में तड़पते ही रहते हैं। लेकिन साथियों, बच्चों के सपने जब पूरे होते हैं तो खुश भी सबसे ज़्यादा माता पिता ही होते हैं। और फिर अगर बच्चे धरती माँ की सेवा की राह पर चलना चाहते हैं तो फिर क्या, फिर तो क्या बात है, माता पिता का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो चलिए आज आपको देश सेवा से जुड़े ऐसे ही अवसर पर वार्ता सुनवाते हैं। विषय है युवाओं के लिए सुनहरे अवसर, अग्निपथ योजना, और वार्ताकार हैं बनवारी लाल कुशवा।
1: किसी भी देश के लिए रोजगार की स्थिति और आर्थिक हालात दो ऐसी चीजें हैं जो उसकी तकदीर को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार की लगातार कोशिश है कि मौजूदा आर्थिक हालात में ऐसी योजना शुरू की जाए जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हों और देश की आर्थिक बुनियाद भी सशक्त और मजबूत हो। इसी मकसद से सरकार ने प्रयोग के तौर पर अग्निपथ भर्ती योजना को प्रारंभ किया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत भारतीय नव युवकों को भारतीय सेना में नौकरी दी जाएगी। इस योजना से उन सभी युवाओं का सपना सच होगा जो लोग भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं और भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं। यह योजना युवाओं को न सिर्फ रोजगार देगी बल्कि सेना की नौकरी के बाद भविष्य के लिए भी सुनहरे अवसरों के मार्ग खोलेगी। इस योजना में देश भर के 10वीं और 12वीं पास के छात्रों के लिए बहुत अधिक अवसर मिला है। इस योजना के तहत 75% सैनिकों को महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 25% सैनिकों को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा देश की सेवा का मौका दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भारत की सेना में भर्ती होंगे उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए हर भारतीय युवा आवेदन कर सकता है। उसे अग्निपथ योजना के तहत जारी की गई सभी योग्यता मापदंडों को पूरा करना होगा। अग्निपथ स्कीम का लाभ महिला और पुरुष दोनों ही उठा सकते हैं। देश को युवाओं की जरूरत है, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए युवाओं को कमर कस लेनी चाहिए। यदि आप 17 से 21 साल की उम्र के युवा हैं तो इस योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि आपको 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एक सैनिक को मिलने वाले वेतन जैसे ही सैलरी मिलेगी जो आकर्षक है। दूसरी बात है कि सेवा निधि पैकेज, यह एक अनूठी खासियत है। इससे युवाओं को एक मुफ्त राशि मिलेगी, यह भी अच्छी राशि है। तीसरा, सेना के जवान को जो भत्ते मिलते हैं वे अग्निवीर को भी मिलेंगे। चौथी बात है कि मृत्यु और विकलांगता के मामले में पर्याप्त मुआवजे के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। यह तो थी धन संबंधी बातें, लेकिन सबसे अहम बात है कि जब कोई युवा सेना में 4 साल तक जुड़ा रहेगा और उसके बाद जब वह समाज में आएगा तो उसके पास पर्याप्त योग्यता होगी। अग्निपथ युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है क्योंकि 4 वर्ष काम करने के बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में उनके पास कौशल, अनुशासन, संयमित जीवन और ज्ञान के साथ इतना पैसा भी होगा कि वो जीवन में आगे के लक्ष्य के लिए किसी पर आश्रित नहीं होंगे। अभी तो इस आयु में या तो वो कोचिंग के चक्कर काटते हैं या कोई भी डिग्री सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि शायद इससे नौकरी मिल जाएगी। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वो देश सेवा कर सकें और सेना में प्रवेश ले सकें। यह योजना काफ़ी सोच समझकर बनाई गई है। इससे युवाओं, सेना और देश सबकी जीत होगी। इस योजना में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी देश की सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। देश की बेटी को देश की सेवा करने का हकदार है। इस अग्निपथ की भर्ती 3 सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना शामिल है। इस योजना में युवाओं को केवल 4 वर्षों के लिए भर्ती

0: किया जाएगा, जिसके बाद इसे सेवानिवृत्त किया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार सेवानिवृत्त युवाओं के लिए नौकरी का भी प्रबंधन करेगी, ताकि युवाओं को समान रोजगार मिल सके। बताने की जरूरत नहीं है कि युवाओं के लिए यह योजना काफ़ी आकर्षक है और उन्हें किसी बहकावे में आने के बजाय इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। वाकई कहें तो यह योजना देश में रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगी। सरकार ने युवा पीढ़ी को सैनिक वर्दी पहनने का मौका दिया है और यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसका अनुभव सब नहीं कर सकते हैं। सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो यह योजना युवाओं और युवतियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जिसके माध्यम से वे रक्षा बल में अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। अगर वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा हो, इस योजना के तहत भर्ती हुए नौजवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर का कुल कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होता है तो उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसको सेवा निधि और बकाया ड्यूटी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों का कुल 48 लाख रुपए का बीमा होगा। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को 44 लाख रुपए एक मुफ्त तथा सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इनमें से 4 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के समय 25 अग्निवीरों को भर्ती कर लिया जाएगा तथा 75 वीरों को नौकरी छोड़ते समय 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज प्रदान की जाएगी, जिस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। सेवा पूर्ण होने पर उन्हें राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में प्राथमिकता और आरक्षण भी दिया जाएगा। इसमें वह BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB के अलावा असम राइफल्स, मर्चेंट नेवी, पुलिस बल, होमगार्ड, देश के IT सुरक्षा इंजीनियर कंपनियों के अलावा रेलवे में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक, बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थानों को अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया के तहत स्वरोजगार के लिए कर्ज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आज हर युवा अपना धंधा करना चाहता है, लेकिन फंड ना होने की स्थिति में वह कुछ नहीं कर पाता, जिसके लिए उसको जो फंड मिलेगा उससे वह अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है, जैसे ड्रोन बिजनेस, सोलर पैनल का बिजनेस, सोलर सिटी बनाने जैसे तमाम रोजगार अपना सकते हैं। यह मदद किस तरह से एक व्यक्ति या उसके परिवार के लिए मददगार साबित होगी यह तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि पूरी योजना को इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें नौकरी और रोजगार के मौके कई रूप में सामने आएंगे। वैसे आपने देखा होगा कि यदि कहीं कोई अपराध हो रहा हो तो लोग उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब कोई अग्निवीर सड़क पर चल रहा होगा और किसी के साथ अन्याय होते देख रहा होगा तो वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे अपराध होने का भी ग्राफ कम होगा।
1: साथियों, अभी आपने बनवारी लाल कुशवाह से वार्ता सुनी। विषय था युवाओं के लिए सुनहरे अवसर, अग्निपथ योजना। और साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझें और सभी को अपना भाई बहन, तभी तो हम सभी की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी और परेशानी के समय सहयोग से कठिन समय में कष्ट भी कम होंगे। श्रमिक साथियों, ऐसे ही विचारों को बल देने के लिए एक विश्व स्तर के संगठन की नींव रखी गई। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

0: जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, स्वास्थ्य, सहयोग, सुरक्षा और न्याय के लिए काम करता है। पूरे विश्व के लिए ये संगठन महत्वपूर्ण है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। साथियों, इसी दिन दुनिया के 193 देश इसके सदस्य बने। और साथियों, ये एक बड़ा संगठन है। इसके अलावा इसके बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों के जरिए ही अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। इससे जुड़े सभी सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए निश्चित धन और समय समय पर सहयोग देना होता है। श्रमिक साथियों जैसे पारिवारिक मुद्दों पर सभी मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, ऐसे ही ये संगठन सदस्य देशों की समस्याओं पर बातचीत करके हल निकालता है और उन देशों की भलाई और विश्व पर प्रभाव के बारे में विचार करके निर्णय लेता है। हमारा देश भी संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य है। साथियों, इस संगठन की स्थापना का विचार दुनिया के देशों को तब आया जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानव जाति को भयंकर विनाश का सामना करना पड़ा। भविष्य में ऐसे विनाश को रोकने और विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से इस संगठन की जरूरत महसूस की गई। 1945 से अब तक इस संगठन में अनेक बदलाव हुए हैं। आज हर क्षेत्र तक इस संगठन की पहुंच है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों की रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख और कुपोषण समाप्त करने के लिए काम करता है और आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करता है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शरणार्थियों, मानव अधिकारों और पर्यावरण के लिए भी काम किया जाता है। इतने बड़े और वैश्विक संगठन के बारे में हम सभी को जरूर समझना चाहिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: तो साथियों, आपने ज्ञान सागर में ये भी जान लिया कि संयुक्त राष्ट्र क्या क्या कार्य करता है और कैसे अलग अलग क्षेत्रों तक इसकी पहुंच है। साथियों, ये संगठन यूं समझिए विश्व में वही स्थान रखता है जैसे परिवार में घर का बड़ा व्यक्ति। और साथियों, अब सेहत टिप्स की बात भी कर लें, क्योंकि उनके बिना हर दिन का कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो साथियों, गर्मी के मौसम में हर कोई यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, लेकिन अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या हो तो पानी में आप कुछ अलग अलग चीज़ें मिलाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को ब्लड शुगर ज़्यादा है तो दालचीनी वाला पानी पीजिए। अगर थायराइड है तो धनिया के बीज उसमें डालकर उसका पानी पीजिए। अगर आप किसी का गला ज़्यादा सूख रहा है, जैसे कट सा रहा है, तो लौंग वाला पानी पीजिए। अगर किसी के मुख से दुर्गंध आती है तो पुदीने वाला पानी पीजिए। अगर खून की कमी है तो काली किशमिश का पानी पीजिए। तो साथियों, अभी हम सेहत टिप्स को बस यहीं पे रोक देते हैं और अब चलते चलते सुनते हैं एक मस्त सा गीत।

0: तो साथियों, आज के हमारे प्रश्न का उत्तर है 15 मई। इसी दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की अंजू बाला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एविया शहर पहुंच गए हैं। एविया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी

0: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Manoj Singh Rana. Prime Minister Narendra Modi is participating in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity at the G7 Summit in Evian, France. The session is being attended by leaders of the G7 nations, partner countries and key representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting just commenced after French President Emmanuel Macron formally welcomed the Prime Minister and leaders of other partner countries, followed by a group photograph of the participating leaders. Earlier today, the Prime Minister arrived in Evian on a two-day visit to participate in the summit, which got underway yesterday. On the sidelines of the summit, the Prime Minister has a packed diplomatic schedule. He is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister

करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 1993 में घोषित किया था। तब से ही विश्व भर में 16 जून को पारिवारिक धन प्रेषण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस। पारिवारिक धन प्रेषण दिवस की भूमिका व उसकी उपयोगिता पर चर्चा के लिए इससे बेहतर दिवस और क्या हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से और एक अर्थशास्त्री के रूप में पारिवारिक धन प्रेषण की भूमिका को तीन पहलुओं से देखता हूँ। एक तो प्रेषित धन के प्राप्तकर्ता परिवारों पर लाभदायक प्रभाव, दूसरे प्राप्तकर्ता देशों के सतत विकास लक्ष्य प्राप्त

प्राप्तकर्ता देशों के सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, प्रेषण प्राप्तकर्ता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती। मैं अपने देश के उदाहरण के साथ बात करता हूँ। हम जानते हैं कि भारत से बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व श्रमिक दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं और अपने परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं। अमेरिका, यूरोप, कनाडा व खाड़ी के देशों में ये संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अमेरिका की पूरी जनसंख्या में लगभग 16% प्रवासी हैं, जिनमें मैक्सिको के बाद दूसरा स्थान भारत का है। खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात की कुल जनसंख्या में लगभग 30% संख्या भारतीय प्रवासियों की है। कुवैत की जनसंख्या में 20% से ज्यादा संख्या भारतीय प्रवासियों की है। इस तरह विश्व भर में लगभग सभी देशों में भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, जो वहां रहकर आय अर्जित करते हुए आय का बड़ा भाग भारत में रह रहे अपने परिवारों को प्रेषित करते हैं। यही प्रेषित धन विकासशील देशों में अनगिनत लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करता है। अनगिनत लोगों के लिए निर्धनता निवारण कर उनके रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। प्रेषण प्राप्तकर्ताओं के जीवन की बेसिक जरूरतों को पूरा करने, खाद्य, रिहायश व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में इस धन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद्य जरूरतों को पूरा करके विशेषतः बच्चों व बुजुर्गों के लिए पोषण स्तर सुधारने में ये सहायक होता है। विदेशों में काम कर रहे श्रमिक अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अपने परिवारों को धन प्रेषण करते हैं। इससे भारत जैसे विकासशील देशों में स्कूल एनरोलमेंट में भी वृद्धि होती है। ये धन प्रेषण बाल श्रम उन्मूलन में भी सहायक होता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ अर्थव्यवस्था में विभिन्न दायित्वों को पूरा करने में धन प्रेषणों की भूमिका। आप जानते हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्य 2015 में निर्धारित किए थे। ये सभी लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने की आशा इन देशों में विशेष करके विकासशील देशों से की जाती है। निर्धनता निवारण, भूख का अंत, स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, असमानता में कमी तथा टिकाऊ भोग आदि इनमें शामिल है। मेरे अब तक के विश्लेषण से आप समझ पा रहे होंगे कि निर्धनता निवारण कर, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देकर, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर तथा आवास, बचत और निवेश को बढ़ावा देकर धन संप्रेषण इन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों में बड़ा मददगार है। अभी तक मैं बात कर रहा था पारिवारिक धन संप्रेषण के प्राप्तकर्ता परिवारों को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसकी उपयोगिता के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगा अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभों की, जो कि समग्र दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी देश व्यापार, पर्यटन, निवेश, चिकित्सा, ऋणों और ब्याज की प्राप्तियों और भुगतान आदि की मदों पर विदेशों से धन प्राप्त भी करता है और भुगतान भी करता है। अर्थात विदेशों से धन का अंतर प्रवाह भी होता है, जबकि बाह्य प्रवाह भी होता है। इनमें से कुछ प्राप्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें वापस लौटाने की देश को आवश्यकता नहीं होती। ऐसी प्राप्तियों और ऐसी अदायगियों को देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते में दर्ज किया जाता है। चालू खाते में अधिक होना देश की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जबकि चालू खाते में प्राप्तियां कम होना इस खाते में घाटे को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। चालू खाते में घाटा रहने पर उसकी भरपाई पूंजीगत आधिक्य से करनी होती है, जिसके लिए विदेशों से ऋण लेना होता है या अपने देश के स्वर्ण भंडारों का हस्तांतरण करना होता है। ऐसी मुश्किलों से बचने के लिए चालू खाते में आधिक्य रखने की कोशिश प्रत्येक देश करता है। मैं जो बात जोर देकर कहना चाहता हूँ वो ये कि पारिवारिक धन प्रेषण से प्राप्तियां देश के चालू खाते की प्राप्तियां होती हैं, जो चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायक होती हैं और विदेशों से ऋण इत्यादि पर निर्भरता कम करती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पारिवारिक धन प्रेषण प्राप्तियों में भारत का विश्व में पहला ही स्थान लगभग

0: बना रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार करीब 830 अरब डॉलर का धन प्रेषण 2024 में विभिन्न देशों में हुआ, जिसमें से 14% से अधिक भाग भारत को ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्रमशः मेक्सिको व चीन के स्थान आते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990-91 में भारत में विदेशी रेमिटेंस, विदेशी धन संप्रेषण जहां 2 अरब डॉलर था, 2001-02 में ये 15 अरब डॉलर, 2011-12 में 66 अरब डॉलर और 2023-24 में ये लगभग 129 अरब डॉलर था। पारिवारिक धन संप्रेषण की इस तरह तेजी से बढ़ती हुई राशि हमारे भुगतान संतुलन के चालू खाते के घाटे को कम करने में बड़ी सहायक है और विदेशों से ऋण लेने की हमारी निर्भरता कम होती है। भारत में पारिवारिक धन संप्रेषण अमेरिका के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी के देशों से प्राप्त होता है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी निवास करते हैं और आय अर्जित करते हैं। इन सारी भूमिकाओं व उपयोगिताओं को देखते हुए ही आज का दिन 16 जून संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से पारिवारिक प्रेषणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रविकांत की वार्ता, पारिवारिक धन प्रेषण और अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में

0: विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 1,000,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरी घाट और यहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए।

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में सातवें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमान गढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: 30 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम लेकर आ गई है आप सबकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी। श्रोताओं कैसे हैं आप सभी? गर्मी की छुट्टियां तो अब खत्म होने को है, अभी से मन उदास है। अरे पर क्यों, जितनी बची हैं उन्हें तो एंजॉय कर लीजिए। एक एक दिन खुल के जीने के लिए है श्रोताओं, यादें बनाने के लिए है, कुछ सीखने के लिए है। ऐसा नहीं है कि छुट्टियां दोबारा नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, पर ये अनुभव जो इस बार मिलने वाला है या मिल रहा

है वो दोबारा मिलेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि समय बदलता रहता है। श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है कि ज़िंदगी में कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी हमें एक पल में अतीत के झरोखों में पहुंचा देती हैं। माँ के हाथ के खाने की खुशबू जाने कितने कितने दूर से हमें खींच लाती है। खाना तो हर कोई बना लेता है, पर एक ख़ास स्वाद, एक ख़ास खुशबू और एक ख़ास सी जुड़ी हुई याद किसी ख़ास से ही जुड़ी होती है, उसका तो क्या ही कहना है ना। वो दादी की अलमारी की या बक्से में रखी हुई चीज़ों की खुशबू, वो दादाजी की किताबें और उनकी लिखी हुई चिट्ठियाँ, या फिर अपने ही बचपन के किताबों की खुशबू। श्रोताओं, ये वो खुशबू है जो सांसों में इस कदर बसी है, जो एक पल में दोबारा उन गलियों में ले जाती है जहाँ से हमारा बचपन गुजरा है। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी आगे निकल जाए, कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, लेकिन उसकी कुछ जड़ें हमेशा वही रहती हैं जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति वर्षों बाद अपने गांव को लौटता है तो सबसे पहले वो अपने घर को नहीं, अपनी ज़मीन को ढूंढता है। आखिर ऐसा क्या है उस मिट्टी में, बताएंगे पर इस गीत के बाद।

श्रुताओं, हम बात कर रहे थे उस मिट्टी की, तो श्रुताओं ये भी बताइए कि क्या वो मिट्टी सिर्फ एक धूल की कण है, या फिर उसमें छिपी होती हैं हमारी यादें, हमारे संस्कार, हमारी पहचान और हमारा पूरा अस्तित्व। भारत जैसे देश में तो मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये इतिहास है, ये विरासत है, ये संस्कृति है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस धरती को अपने कर्म से, अपने प्रेम और अपने बलिदान से सींचा है। जब हम भारत की मिट्टी की बात करते हैं ना, तो उसके साथ अपने आप जुड़ जाती है हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीत, हमारे मेले, हमारे त्यौहार, हमारी परंपराएं और हमारी वो अनमोल विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। श्रोताओं, भारत की संस्कृति वर्षों पुरानी है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि समय बदलता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन हमारी मिट्टी की खुशबू आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारे गांव में आज भी सुबह मंदिर की घंटियों से होती है, कहीं गुरुद्वारे में गुणवाणी शुरू देती है, कहीं मस्जिद से अजान की खुशबू आती है, तो कहीं चर्च की घंटियां गूंजती हैं।

श्रोताओं, यही तो हमारा भारत है, अनेकता में एकता का सुंदर सा उदाहरण। दोस्तों, आपने कभी सोचा है भारत के लोक गीतों के बारे में, या कभी सुना है कि इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनमें मिट्टी की सच्ची सी खुशबू बसती है। राजस्थान का लोक संगीत हो, पंजाब का भांगड़ा हो, गुजरात का गरबा हो, उत्तर प्रदेश की कजरी हो, या बिहार का सोहर हो, या फिर बंगाल के लोकगीत हो, हर गीत अपनी मिट्टी की कहानी होती है। लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि वो इतिहास होता है। वो बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, कैसे खुशियाँ मनाते थे। भारत की संस्कृति समझना हो तो किताबों से पहले गाँव के चौपाल में जाके बैठना चाहिए। वहाँ आपको असली भारत दिखाई देगा। तो चलिए, जहाँ असली भारत की पहचान हो रही है, तो हम असली खुशबू लिए मिट्टी की भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी है।

श्रोताओं, एक समय था जब गांव की चौपाल केवल बैठने की जगह नहीं होती थी, वहीं गांव का समाचार केंद्र होता था, वहीं मनोरंजन का मंच होता था, वहीं रिश्ते जुड़ते थे, वहीं बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। लोग घंटों बैठकर बातें किया करते थे, हंसते थे, सीखते थे। बेशक घर छोटा हुआ करता था, पर दिल बहुत बड़ा हुआ करता था। मोबाइल नहीं होता था, पर कम्युनिकेशन हमेशा होता था। स्टाइलिश घड़ियां नहीं होती थी, पर वक्त सबके पास सबके लिए होता था। आज हमारे सर के ऊपर बुजुर्गों के आशीर्वाद वाले हाथ नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ उनके पैर तक बढ़ता ही नहीं है जिसे हम छूकर आशीर्वाद ले सकें, बल्कि हमारे उन हाथों में महंगा मोबाइल पकड़ने का चलन है। श्रोताओं, हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन जीने का अनुभव टेक्निक से नहीं, मिट्टी से जुड़े रहने से आता है, जहाँ त्याग, समर्पण, साहस और समझ थी। श्रोताओं, ये सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना ज़रूरी है। पीछे हमें सीख मिलेगी कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर परंपराएं, रीति रिवाज, मिट्टी की खुशबू, उनकी पहचान हमने खो दिया, अपनी पीढ़ी को नहीं सिखाया, तो हमारे पास सिवाय पछताने की कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? अभी भी वक्त है, आधुनिकता की तरफ जाते जाते मिट्टी की पहचान ना भूलें। आपके अंदर अगर मिट्टी की खुशबू बाकी है तो आप जिंदा हैं। तो इसी बात के साथ आपकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी अब चलती है और कहती है टाटा बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

बॉर्डर इस फिल्म में आप सुन रहे हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत है

अभी आप सुन रहे थे वीर सारा फिल्म ने उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत था मदन मोहन का। श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने सुना फिल्म कर्मा में कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे हैं परदेस फिल्म में हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत है नदीम श्रवण का।

परदेस फिल्म के इस गीत के साथ ही भारत भारती कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और इस कार्यक्रम का पहला गीत सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला की आवाज में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है जतिन ललित और फिल्म का नाम है दिल क्या करे।

दिल धड़कने दो। इस फिल्म में आप सुन रहे थे यशिता शर्मा और फरहान अख्तर की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत था शंकर एहसान लॉय का। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा। आवाज़ है अलका याग्निक की, कुमार सानू और उदित नारायण की मिली जुली आवाज़ें हैं। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

अगर आपने कुमार सानू और उदित नारायण के गाए फिल्म दिल है तुम्हारा के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख

0: व्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है।

0: जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit.

0: Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Fencing Association of India, FAI, has officially announced the Indian senior team for the 26th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France. Also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1,000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदाम से मुतालिक तआवुन को फरोग देने की गरज से पेरिस मुआहदे के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के लिए निफाज के जाब्ते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लिबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। IMD ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंद हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एवियां में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था नई शराकत दारियां और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम की तामीर नौ का फरोग। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकतदार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से वजीर आजम मोदी और शरीक होने वाले दीगर लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے نمائندے انکت کمار، جو وزیر اعظم کے G7 کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض

0: से एविया से ये रिपोर्ट भेजी है।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
0: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ के तई पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टामर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैखां की जानिब से मुनक्किदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़ियात पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस मैसेना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का आगाज किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना UPI की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज भारत और फ्रांस के दरमियान इकतसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनअती मुल्कों के ग्रुप ऑफ 7 समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाज़े के 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेजबान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखां ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी आज सुब वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही खत्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायजा लिया। वजारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनिनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाजुर में वजीर मौसूफ ने कपास की पैदावार में इजाफे, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले ज़िलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीजन के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इकदामात किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उनाजला में जहां कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अजला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम

0: की जा सके। नई दिल्ली से सुपन्ना सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और कुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज्यादा अपनी जमीनी सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है, जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक जरूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक

0: पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजाइर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैंपियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की पहली मर्तबा मेज़बानी करेगा, जो कि एक तारीखी संगे मील है। 30 से ज़्यादा ममालिक और 400 से ज़्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं, जिसकी क़्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप एक मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबरा इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म, नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीज़न के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल प्रोग्राम नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन वेस्ट बंगाल आफ्टर BJP's हिस्टोरिक मैंडेट, governance, development and future priorities. Participants are Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist.
2: On May 4 this year, the BJP registered a stupendous and historic victory in West Bengal, basically dislodging a very formidable force called the Trinamool Congress led by Mamata Banerjee, who had been in power for a long 15 years. Obviously, the politics of Bengal has captured the imagination of political observers, of citizens across the country, for various reasons, because West Bengal is not just a routine state, it is the cradle of Indian nationalism. It was once the economic powerhouse of the country. We all know that the East India Company made its first inroads into India through West Bengal. So the victory of BJP in the state, the eastern state, has many layers and many meanings and many consequences. Today we are joined by senior journalist and political analyst Kanchan Gupta, who will throw some light on what it means for the BJP to take control of Bengal after so many years of Trinamool rule and what is the way forward really. Welcome Kanchanji. How do you see, as a political analyst, the result in West Bengal on May 4, because it is still seeping in?
3: Well, it was quite expected that the BJP would do well and the TMC, which was burdened with anti-incumbency, would suffer erosion. But most of us thought the BJP would get anything between 170, 180 seats. That's what the trends were also showing. But a victory of this scale, where you cross the 200 mark and you go up to 208, I think it's 209, 210 now, it's unimaginable. But the fact remains that the Trinamool Congress performed extremely poorly. And more than the BJP winning this election, the story is about the Trinamool Congress losing this election. And we should look at the main reasons as to why a party which seemed so formidable that everybody kept saying, oh, no matter how hard you try, you cannot dislodge them, just collapsed like a house of cards. And

0: एक और जो मुद्दा रहा ये बंगाल के इलेक्शन में, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आरजी कार को लेके बहुत सारे रेबल एमपीज जो टीएमसी के, उन्होंने रिकॉर्ड पे बोला है कि उस वक्त जिस तरीके से कंडक्ट किया गया वो ठीक नहीं था।
1: खैर उस वक्त तो ये रेबल, तथाकथित रेबल एमपीज और एमएलएस, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था। ये एक विषय जरूर बन गया था, महिला सुरक्षा, ये हैड बिकम अ वेरी बिग इश्यू ओवर देयर। आरजी कार केम टू सिंबलाइज की द कंडीशन विच प्रिवेल्ड इन वेस्ट बंगाल। एक ड्यूटी पर डॉक्टर, उसको अस्पताल के अंदर शी इज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड, and then the callous response of the authorities, the hospital authorities, the police and the government. And Mamata Banerjee was home minister, she was also the health minister, and of course she was the chief minister. In all three roles she failed to respond to that tragedy. And Arji Kar, believe me, was a ghastly tragedy, but there were various many other such incidents in the rural areas where young girls were picked up. You have Sondesh Khali incident where women were abused, sexually abused in party offices. All the details which are now coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure. Yeah. So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
0: So, Kanchan ji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
1: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, इफ दे आर नॉट पनिश्ड, देन टुमारो यू विल फाइंड अनदर सेट ऑफ एक्सप्लॉयटर्स कमिंग इन टू प्ले। सो ये जरूरी है। दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा था, किस किस्म का कट मनी, यू सी दीज आर ऑल थ्री थिंग्स। तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा, दैट इज तोलाबाजी। कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे। सो दैट वाज कट मनी। एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स। आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा, उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा, आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे।
0: सो एन एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव,
1: इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट।
0: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग। तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया। तो कितना इंपॉर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में।
1: ये बात सही है, और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए, और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक

0: कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा। अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड
1: डेवलप्ड
0: है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया। मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहाँ पहुंच गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहाँ पहुंच गया और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो हमें आगे का देखना पड़ेगा, एंड वेस्ट बंगाल कैन नॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी
1: एब्सोल्युटली
0: दैट वी प्रोड्यूस द कंट्रीज मोस्ट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ
1: पोटैटोज
0: पोटैटोज।
1: लाइक यू हर्ड कंचन गुप्ता जी दैट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द डेस्टिनी ऑफ बंगाल बिकॉज यू वुड रिकॉल दैट इट वॉज फ्रॉम बंगाल दैट द ब्रिटिश ऑल्सो बिगैन एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिकॉज दे रियलाइज वेरी अर्ली दैट इफ दे हैव टू कैप्चर द सोल ऑफ इंडिया दे मस्ट फर्स्ट ब्रेक बंगाल सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बंगाल टू द फेट एंड डेस्टिनी ऑफ आर कंट्री थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस कंचन
0: थैंक
1: जी
0: यू।
1: थैंक यू In this special program, you were listening to a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants were Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app. News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. और अब से कुछ

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह

आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था, वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हरा कर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव

0: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
1: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे
0: जी।
1: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
0: जी।
1: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
0: जी जी।
1: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
0: जी जी।
1: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
0: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
1: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फर्क आया हुआ है
0: जी।
1: पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी
0: जी।
1: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
0: जी।
1: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
0: जी,
1: थे
0: जी।
1: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
0: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
1: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन
0: जी।
1: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे
0: जी।
1: तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर
0: जी जी।
1: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है
0: जी,
1: ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा
0: जी।
1: तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उसको। आजकल आधुनिकता की जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है
0: जी,
1: इससे आगे भी मिलेगा और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
0: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग

0: का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग
0: जी
1: जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है,
0: जी
1: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम
0: जी
1: लोगों ने
0: जी
1: अच्छा अपना मेडल खो दिया,
0: जी जी जी
1: तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर भी, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है।
0: जी
1: अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते, और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती
0: जी
1: है।
0: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
1: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि
0: जी
1: हम
0: जी
1: अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं, और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है,
0: जी
1: आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
0: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
1: प्रॉपर यह है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप,
0: जी।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो, और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है, हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है, उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं, जब गलतियां करेगा, और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
0: बिल्कुल
1: पाएंगे उस चीज को,
0: बिल्कुल
1: और गलतियां होती हैं, तो
0: जी।
1: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
0: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
1: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं, हाँ मैच चल रहा है कभी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से आगे हैं, 1-2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है, जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी, हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रही, मेंटली स्ट्रांग थी, उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ, साक्षी मलिक ने लगाया था मेडल लाया, नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती, तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है हमें अदर कोच है जो भी टीम कोच गया वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
0: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की,
1: जी
0: तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से

0: ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
1: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे,
0: जी
1: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं,
0: जी
1: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी,
0: जी
1: मगर
0: जी
1: महिला और उत्तर प्रदेश आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
0: जी
1: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
0: जी
1: ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
0: जी जी जी
1: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
0: जी जी
1: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है, महिलाओं के जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है, आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से मानसिक
0: जी
1: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
0: जी
1: आइए।
0: अच्छा है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
1: देखिए एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
0: जी
1: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है, तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है। 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
0: जी।
1: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
0: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
1: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है,
0: जी
1: ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं।
0: जी
1: इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
0: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
1: जी
0: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
1: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
0: जी
1: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल,
0: जी
1: अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
0: जी जी
1: एक
0: जी
1: दो अंकों के अंतर से
0: आ रहे हैं
1: मेडल से रह गए थे,
0: जी
1: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
0: जी
1: अंतिम पंघाल
0: जी
1: और मानसी हैं, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
0: जी
1: करती हैं।
0: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
1: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी एशियन गेम्स ट्रायल में वो दीपक पुनिया से ही हारा,
0: जी
1: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
0: जी जी
1: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
0: जी जी
1: चंचल सिरोही है उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में
0: जी
1: जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ, कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए, और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये

मीडियम वेव 196.1 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वक्त हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अकील अहमद खान की राग मारू बिहाग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खान से राग मारू विहार में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1523 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा